एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक

0: रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब 8 से 10 अगस्त तक तीन चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर आप हैं समय आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। जीवन में भाग्य से पहले कर्म चलते हैं। कई बार हमें लगता है कि गलत करने वाला सुखी है और अच्छे कर्म करने वाला संघर्ष में है, लेकिन प्रकृति का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। समय भले बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन कर्मों का लेखा कभी नहीं मिटता। इसलिए किसी के साथ अन्याय करने से पहले एक पल ठहर के सोचिए, और किसी का भला करने का अवसर अगर मिले तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए। जो हम दुनिया को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए हमें अपने कर्म ऐसे रखने हैं कि रात को सोते समय मन में शांति हो और आत्मा भी संतुष्ट हो। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की इस शिव भजन के साथ।

जब मन भटकने लगे तब बजरंग बली जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

श्रावण मास में महादेव का स्मरण केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि अपने मन को निर्मल बनाने का संकल्प भी है। शिव की भक्ति हमें अहंकार छोड़कर प्रेम, क्षमा और संतुलन का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। माँ की कृपा का अर्थ केवल इच्छाएं पूरी होना नहीं बल्कि सही समय पर सही मार्ग दर्शन मिलना है। जहां माँ का आशीर्वाद होता है वहां निराशा भी उम्मीद में बदल जाती है।

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम भक्ति प्रस्तुति। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर आप रोजाना सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। शुभ प्याग हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:40 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे कुछ हिमाचली लोकगीत। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और इसी दौरान 9:20 पर प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 10 बजे प्रसारित करेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11 बजे आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। 11:05 पर आज पहाड़ों की गूंज कार्यक्रम में हिमाचली लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 11:30 का समय रहता है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के प्रसारण का। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम दोपहर 12 बजे। 12:30 पर बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी सुनो सखी। आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन होगा और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित रहेगा। दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से आप लुत्फ उठाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान दोपहर 3 बजे प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिला की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक आप विविध भारती के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। शाम 5 बजे समाचार आप सुन सकते हैं जिनमें 5 बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 5:10 पर आज फिल्मों से कुछ भजन सुनवाए जाएंगे। युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे शाम 5:30 पर। आज युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत सैर सपाटा की बात होगी। 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजियां गराई दिया। ये कार्यक्रम शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी। उसके बाद मिले जुले गीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा सबरस। देशभक्ति गीत रात 8:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत आज गायक गायिका क्रम में आप सुनेंगे सोनू निगम द्वारा गाए कुछ गीत। धाम गीतांदी हिमाचली लोकगीतों का यह कार्यक्रम रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 10:00 मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10:30 पर लुत्फ उठाएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का चित्रपट संगीत। सभा के अंत में समाचार आप सुन सकते हैं, जिनमें रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार शामिल होंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं कुछ ही देर में। पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिरन्यासाय प्राप्तदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्य प्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषण दले पंचम सदस्य रूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिरदानचौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदक तालिकायां एकं स्वर्ण पदकं, त्रीणि रजत पदकानि, एकं कांस्य पदकं च एवं आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar's State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all First Information Reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut of time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs in China, in Beijing and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Misri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India and China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishchuk, yesterday following the attack on a commercial vessel MV OMORFI, in which it

सुबह सुहानी। मौसम चाहे धूप का हो, बादलों का हो, हल्की फुहारों का हो, या फिर हो रही हो झमाझम बारिश, हर सुबह अपने साथ उम्मीदों की नई वजह लेकर आती है। और हम भी चले आए हैं आज की इस सुबह को और खूबसूरत और सुहाना बनाने के लिए, लेकर प्यारे प्यारे से गीत, जानकारियां और ढेर सारी बातें। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुबह सुहानी में स्वागत, और सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर रोज की तरह कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। भविष्य को नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपकी आदतों को बदला जा सकता है, और आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। जी हाँ, ये कितनी खूबसूरत सी बात है जो कही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हम अक्सर कल की चिंता में उलझे रहते हैं, जबकि असली बदलाव आज की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। समय की कद्र करना, हर दिन कुछ नया सीखने की ललक, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की सनक, यही आदतें धीरे धीरे हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। तो आप भी आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, हर दिन एक छोटी आदत अपनाने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी कामयाबी की कहानी लिख देती हैं। इसी सकारात्मक सुविचार और सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब आपको लेकर चलते हैं वहां जहां शब्दों की जगह अब सुर अपनी कहानी कहेंगे।

जी सभी श्रोता आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं आकाशवाणी धर्मशाला पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। बात अब आज की यानी 8 जुलाई के इतिहास की। श्रोताओं, हर तारीख अपने साथ कुछ किस्से लेकर आती है, कुछ ऐसे पल जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली, कुछ ऐसे नाम उस तारीख को खास बनाते हैं जिन्होंने अपने काम से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए अब जरा वक्त की सुइयों को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं आज यानी 28 जुलाई के दिन इतिहास में क्या कुछ खास दर्ज हुआ। बात सबसे पहले आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की। साल 1914 में आज ही के दिन यानी 28 जुलाई के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 28 जुलाई साल 1928 को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम्स में आयोजित 9वें ओलंपिक खेलों का आधिकारिक उद्घाटन समारोह आज ही के दिन हुआ, जबकि प्रतियोगिताएं इससे पहले यानी 17 मई से शुरू हो चुकी थी, लेकिन 28 जुलाई को हुए इस समारोह ने ओलंपिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इसी ओलंपिक में पहली बार स्टेडियम में ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की गई और महिलाओं ने पहली बार एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। साल 1979 में आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। बात अब उन खास हस्तियों की जिनके निधन आज के दिन हुए। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता जगदीश राज, जिन्हें फिल्मों में सबसे अधिक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, 28 जुलाई साल 2013 को इस दुनिया से अलविदा हुए। डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक आज ही के दिन इस नश्वर संसार से रुखसत हुए साल 2004 में। बात

उन खास हस्तियों की जिनका जन्म हुआ 28 जुलाई में। साल 1925 में जन्म हुआ 28 जुलाई के दिन हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारुक ब्लूमबर्ग का 28 जुलाई को ही उनके जन्मदिवस को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में भी मनाया जाता है। साल 1972 में जन्मी है आज ही के दिन अभिनेत्री आयशा जुल्का। दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता धनुष का जन्म भी आज के दिन हुआ है, यानी 28 जुलाई साल 1983 में वो जन्मे हैं। और साल 1986 की बात करें तो 28 जुलाई को जन्मी है हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हुम्मा कुरैशी। तो श्रोताओ, ये थे 28 जुलाई के इतिहास के कुछ चुनिंदा पन्ने जिनको पर हमने आज नजर डाली। इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि हर नया दिन कुछ ऐसा करने का अवसर है जिसे आने वाला समय याद रखे। आइए अब बढ़ते हैं आगे संगीत और मुस्कुराहटों के इस सफर में, और ये गीत अपने श्रोताओं के लिए। क्योंकि हमारे श्रोताओं जैसा ना कोई है, ना था, ना होगा।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, दुनिया भर में हर साल सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक दिन मनाना नहीं बल्कि उस विषय पर बातचीत शुरू करना और लोगों को उससे जोड़ना है। आइए जानते हैं आज मनाए जाने वाले दिवस कौन से हैं और उनका क्या कुछ महत्व और उद्देश्य है। श्रोताओं, जरा एक पल के लिए अपने शरीर के उस मेहनती साथी के बारे में सोचिए जो बिना किसी शोर शराबे के दिन रात आपकी सेहत की रखवाली करता है। वो है हमारा लीवर। इसी अनमोल अंग को सुरक्षा या सुरक्षित रखने का संदेश देता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो हर साल 28 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है और यदि समय रहते इसकी पहचान ना हो तो ये गंभीर रूप जो है वो ले सकती है। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है, जबकि कई प्रकार के हेपेटाइटिस का समय पर जांच और इलाज संभव है। इस वर्ष का वैश्विक विषय है, संदेश है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी हेपेटाइटिस से जुड़े भ्रम, इलाज और डर में आने वाली बाधाओं को मिलकर दूर करें। आइए और अपने परिवार की सेहत को प्राथमिकता दें, समय पर जांच करवाएं, टीकाकरण अपनाएं और जागरूकता फैलाकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका और भागीदारी हम निभाएं। एक और दिवस आज हम मना रहे हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, उसके बारे में बात करेंगे इस गीत के बाद।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: आप बने हुए समय आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हरे भरे पेड़, बहती नदियां, पहाड़ों की ठंडी हवा, चहचहाते पक्षी और खिलखिलाते फूल, यही तो प्रकृति की वो अनमोल सौगातें हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण का संदेश देता है ये दिवस, आज का यानी 8 जुलाई के दिन मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन प्रकृति के संतुलन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति की छोटी सी पहल भी बड़ा बदलाव ला सकती है। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और वन्य जीवों की रक्षा करना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ, हरा भरा और संतुलित पर्यावरण सौंपेंगे, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। जी, कोई खास दिवस हम मनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस विशेष दिन पर ही हमें जागरूक होना है। उस विषय के प्रति हमेशा जागरूक हम रहेंगे तभी ये दिवस मनाने का उद्देश्य जो है वो सफल हो सकता है। कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, वक्त है खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संदेश दिए हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष थमा हुआ है और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक व्यापारिक समुद्री जहाज पर हुए हमले जिसमें 4 भारतीय नागरिक सवार थे के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है और भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने देश में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए लोकसभा में एक कड़ा पेपर लीक विरोधी विधेयक पास किया है। इसके तहत दोषियों को न्यूनतम 5 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। देशव्यापी छात्र विरोधी प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हम सब जानते हैं उनके स्थान पर प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री उनके पद पर नियुक्त किया गया है। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के कई जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर स्कूल बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। बात करें खेल जगत की तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है और भारत ने इस शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों में भारोत्तोलन और पैरा एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय

तो आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिश और कहीं कहीं तेज वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जी हाँ, बरसात का मौसम है, ध्यान रखें और सतर्कता बरतें पूरी, और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।

0: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है ये, और अब वक्त है लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का। कार्यक्रम शुभ प्याग की शुरुआत, श्रोताओं, हम कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ठाकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।

0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032

0: 2030 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश हैं हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य

0: पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है। आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बखमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बखमून की शक्ल में नजर आएगा। प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, मीट्स स्काईरूट एरोस्पेस फाउंडर्स आफ्टर विक्रम 1 सक्सेस। बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स टू विदड्रॉ केसेस अगेंस्ट नीट प्रोटेस्टर्स and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
4: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases.

बलदेव सांख्यान का गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है नेक सिंह ठाकुर ने।

0: हिमाचली लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगले लोकगीत से पहले वक्त है एक ब्रेक का।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
0: हिमाचली लोकगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे गाया है बिमला देवी ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
8: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
9: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
10: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
11: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
10: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
11: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
10: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
12: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत।

0: हिमाचली गीतों की ये थी अंतिम पेशकश। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह के 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
0: प्रोग्राम है हेलो धर्मशाला और सभी श्रोताओं का प्रोग्राम में स्वागत। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और हर रोज की तरह, माफ कीजिएगा, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी हाजिर हैं हम लेकर के प्रोग्राम हेलो धर्मशाला। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी तब ज्यादा आसान हो जाती है जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और आज के इस खूबसूरत सुबह में हम भी आपके लिए लेकर आए हैं हेलो धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ शानदार फिल्मों के ऑप्शंस। अब उन फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और उस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे, ये फैसला होगा आपका। तो सोचना क्या है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बताइए हमारी चुनी हुई फिल्मों में से आपकी पसंद कौन सी है। 01892224391 ये है स्टूडियोज का नंबर। ओहो हो, हमारे ये प्यारे प्यारे से बेसब्र से श्रोता, इनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। श्रोताओं फोन बेशक कीजिए, पहले फिल्मों के नाम तो सुन लीजिए। आज की फिल्में हैं आवारा, संगम, मिलन, मेरा नाम जोकर, शोले, सरगम, डिस्को डांसर, मिस्टर इंडिया, तेजा, मैंने प्यार किया, दिल, 1942 लव स्टोरी, हम आपके हैं कौन, मिशन कश्मीर, कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, देवदास, वीर जारा और ओम शांति ओम। जी, और इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश में है। हेलो,
2: नमस्ते।
0: हाँ जी, नमस्ते जी, नाम बताएं।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, आपने फिल्मों के नाम सुने?
2: जी बिल्कुल, तेजा फिल्म का सुनाएंगे हम गाना आपको।
0: जी हम, आप सुनवाएंगे या हम सुनवाएं?
2: नहीं, हम डेडिकेट करेंगे आपको, इसलिए तो कहा हम सुनवाएंगे आपको और आप सुनाएंगे उधर से।
0: जी बहुत बढ़िया, पसंद आपकी है, फिल्म हमारी है, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: जी तेजाब में आप उसका कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा, लेकिन वो आपके लिए डेडिकेट रहेगा, इसलिए हमने कहा कि आपके लिए हम सुनाएंगे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है प्रेम सिंह जी, आपने कॉल किया और हमें बहुत प्यारा सा गीत आप इस फिल्म का सुनवा रहे हैं, और कॉल के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।
2: जी थैंक यू सो मच।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: जी इन्हें तो इंतजार है, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे श्रोता जो है लगातार कोशिश करते हैं हमसे जुड़ने की। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: प्रोग्राम में आपका वेलकम। नाम बताइए।
1: मैम मैं सानिया बात कर रही हूँ, पालमपुर से।
0: जी सानिया, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी फरमाइश बताइए पहले।
1: मैम कौन कौन सी मूवीज है आपके पास?
0: फिल्में बहुत हैं आज हमारे पास। ओम शांति ओम, वीर जारा, देवदास, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, कहो ना प्यार है, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, दिल, 1942 अ लव स्टोरी, मिस्टर इंडिया, डिस्को डांसर, सरगम, शोले, मेरा नाम जोकर,
1: क्या बोलते, ओम शांति ओम का टाइटल ट्रैक।
0: जी ओम शांति ओम फिल्म का आपको गीत सुनवाते हैं। क्या करती हैं?
1: मैं स्टडी करती हूं ना।
0: जी तो अभी स्कूल में छुट्टियां हैं?
1: अभी तो छुट्टियां
0: हैं। जी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं, साथ साथ इस गीत का भी मजा लीजिए। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया आपका।

0: जी हाँ, हमारे श्रोताओं की तो दीवानगी ही है ये, जो लगातार फोन पे फोन करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी हमसे बात हो जाए। आइए चले कोशिश करते हैं हम भी अगले श्रोता से बात करने की। हेलो
1: ए भाई, जरा देख के चलो।
0: जी परिचय दे अपना सुनने वालों को।
1: मेरा नाम जोकर।
0: जी जी जी, अपना परिचय दीजिए पहले।
1: हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला हुशियारपुर तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी राणा जी, कार्यक्रम में स्वागत है और आपकी पसंद हम पूरी कर रहे हैं।
1: नर्मदा जी बोल रही हैं?
0: जी नहीं, नीलम बात कर रही हूँ मैं।
1: नीलम जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते, जी नमस्ते। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, अपनी पसंद का गीत सुनिए, आनंद लीजिए इस गीत का।
1: देखिए आज हम प्राकृतिक दिवस मना रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: उसके बारे में हमको सबको अवेयर होना

0: चाहिए, जागरूक होना चाहिए।
1: जी
0: देखिए, हम लोग जो प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं।
1: जी जी,
0: पहले तो देखो देखो किसान भाई, देखो अन्न जरूरी है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी।
0: अपने लालच के लिए देखिए कितना फर्टिलाइजर, कितना तो दवाइयाँ छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करो,
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: हद से ज्यादा हो रहा है
1: जी, तो बिल्कुल।
0: प्रकृति भी बिगड़ रही है। दूसरा नंबर इंडस्ट्रियल जो एरिया है, जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको चिमनी जो है बहुत ऊंची बनानी चाहिए, उससे भी जो खराब होता है उसमें जो दूषित पानी निकलता है
1: जी।
0: वो भी पानी भी खराब होता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तीसरा नंबर हम लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बेकार में इधर उधर फेंक देते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: और जो भी है नदी नालों में फेंक देते हैं, उससे भी प्रकृति का रूप स्वरूप बिगड़ जाता है
1: जी, बिल्कुल। राणा जी, बहुत अच्छा संदेश है आपका सभी श्रोताओं के लिए, और जागरूकता बहुत जरूरी है हर विषय पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमको प्रकृति को संभालना है, अगर प्रकृति होगी तो हम रहेंगे
1: जी,
0: अगर
1: बिल्कुल।
0: प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे
1: जी, बिल्कुल। जरूरत से ज़्यादा दोहन प्रकृति का हम लोग कर रहे हैं, और ज़रूरत हमें ये करनी है कि हम जागरूक बने और प्रकृति का संरक्षण करें। कॉल किया आपने, बेहद शुक्रिया, और अच्छी बातें आपने साझा की। अपनी पसंद का गीत सुनिए।
0: ठीक है, धन्यवाद
1: जी।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन

0: जी श्रोताओं, फिलहाल इस संगीत से भरे सफर को कुछ पल के लिए विराम देने का वक्त है। बारी है समाचारों की। कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला की स्टूडियोज हम आपको लिए चलेंगे, जहां से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे और हम आपसे रूबरू होंगे 9:30 पर।
1: गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर क्यों जब तक न खाएगा।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा। अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बढ़ाई जाएगी पीजी डॉक्टर की 330 सीटें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश लोक परीक्षा संशोधन विधेयक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। मंडी जिला में शिवा परियोजना के तहत अमरूद के बाग स्थापित कर बागवानी विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी। और प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कल धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पैकेज के तहत राज्य सरकार अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की बजाय 7.5 लाख रुपए देगी। इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कुल 8.5 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी।
1: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन, पलंग, बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
0: अपने कांगड़ा दौरे के दौरान कल मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या बढ़ा रही है। प्रदेश में 330 नई पीजी सीटें बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 100 पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा चिकित्सा महाविद्यालय टांडा सहित अन्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही है, ताकि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर या निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संतुष्टि होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे खत्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर

0: करने पर केंद्रित है। प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक की जाएगी। इस योजना के तहत सिडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 31 अगस्त तक की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रोसेसिंग ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरा की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम जबकि गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 21 नवंबर से शुरू होगी। सेब खरीद के लिए इस वर्ष प्रदेश भर में 42 कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिले में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एचपी शिवा परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परियोजना के तहत सदर विकासखंड के बाड़ी क्लस्टर में बड़े स्तर पर अमरूद के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश को फल राज्य बनाने की दिशा में बागवानी विभाग ने एचपी सेवा परियोजना के तहत मंडी जिला के सदर विकास खंड के बाड़ी क्लस्टर में बड़े स्तर पर अमरूद के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। परियोजना के तहत इस सीजन में 7,777 अमरूद के पौधे लगाए जाएंगे। किसानों को अमरूद की उत्तम किस्मों VNR वही और जॉर्वी रेड के पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं। पौधारोपण के साथ आयोजित प्रशिक्षण शिविर में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बाग लगाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। बागवानी विशेषज्ञों ने खेत में ही गड्ढों की तैयारी, खाद के सही अनुपात, पौधारोपण की विधि और पौधों की देखभाल की आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया ताकि किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय सुनिश्चित की जा सके। बागवानी निदेशक डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि बाड़ी क्लस्टर का चयन करीब 2 महीने पहले किया गया था और विभाग की तत्परता से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बड़े स्तर पर पौधारोपण शुरू किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ मंडी जिला में फल उत्पादन की नई पहचान बनेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों और महंगाई भत्ते की किश्तों को इसी माह जारी करने की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 8 अगस्त को शाहपुर में 18 पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा जिसमें बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों में 31 जुलाई तक छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों के भुगतान का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए संगठन ने आगामी रणनीति तय करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों का संवेदनशील माना है। आज 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सिरमौर जिला के पांडा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार आज से 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
2: आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसमें इंटेंसिटी वाइज काफी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और वेदर एक्टिविटी देखिए 30 और 31 जुलाई को काफी सक्रिय रहेगा।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, दुर्गम क्षेत्रों में 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं होंगे ट्रांसफर, तबादला नीति में संशोधन। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, पेपर लीक व भर्ती घोटाला भाजपा शासन की देन, कांग्रेस सरकार ने दोषियों को जेल भेजा। सड़क पर चलते चलते रिचार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है। राजकीय इंजीनियर

0: इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र ने छात्रों ने बनाया हाइब्रिड वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, प्रमोशन के लिए एक बार विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी उससे पीछे नहीं हट सकते। शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर अब वाहन परमिट फीस 75 रुपये दैनिक जागरण की एक खबर है। हिमाचल दस्तक के अनुसार प्रदेश के लाखों लोगों को इस साल मिलेगी करीब 1200 करोड़ की बिजली सब्सिडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा, अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बढ़ाई जाएगी पीजी डॉक्टरों की सीटें 330। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश लोक परीक्षा संशोधन विधेयक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। मंडी जिला में शिवा परियोजना के तहत अमरूद के बाग स्थापित कर बागवानी विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी। और प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के।
4: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 MHz पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का शेष भाग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप, प्रोग्राम है हेलो धर्मशाला। अगर आपने अभी अभी हमारा साथ पकड़ा है, यानी अभी अभी जुड़े हैं आप आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, आपको बता दें आज का खेल बहुत दिलचस्प है। फिल्मों के ऑप्शन हमारी तरफ से, लेकिन उन फिल्मों में से कौन सा गीत बजेगा ये आप तय करेंगे। तो कॉल कीजिए, अपनी पसंद बताइए, सुनिए अपनी फिल्म से पसंदीदा गीत। और फिल्मों के नाम पहले सुन लें, आवारा संगम मिलन, शोले सरगम, डिस्को डांसर, मिस्टर इंडिया, मैंने प्यार किया, दिल, 1942 लव स्टोरी, हम आपके हैं कौन, मिशन कश्मीर, कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, देवदास और वीर जारा। जीरो वन एट नाइन टू टू टू फोर थ्री नाइन वन ये है स्टूडियोज का नंबर। हेलो जी, श्रोता लगातार जुड़ने की कोशिश में है लेकिन किसी वजह से फोन कॉल कट रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है, फोन मिलाइए एक बार फिर से 01892224391 और कोशिश कीजिए हम संग बात करने की। जी श्रोताओं, मौसम जो है यहाँ बहुत ख़राब है, जोरों से बारिश हो रही थी और शायद हो रही होगी अभी भी, हम स्टूडियो में इतना पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मौसम की वजह से कई बार फ़ोन लाइन में दिक्कत आती है। तो घबराने की बात नहीं है, हम आपके मनोरंजन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक कोई और कॉलर हमसे जुड़ता है तब तक हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हेलो धर्मशाला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला पर 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं किरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जल्दी से पसंद बता दीजिए अपनी।
1: अब बताइए मैडम कौन कौन सा पिक्चर।
0: जी फिल्में हैं डिस्को डांसर, मिस्टर इंडिया, सरगम, शोले, मैंने प्यार किया, दिल, 1942 लव स्टोरी, हम आपके हैं कौन।
1: जी डिस्को डांसर का आई एम ए डिस्को डांसर विजय बेनेडिक्ट की आवाज में।
0: जी बिल्कुल, आपको आपकी पसंद का गीत हम आपके शहर तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया जी। अपनी पसंद का गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम फोन शामिल किए, धन्यवाद।
0: जी आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से, और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं।

हो सकता है इस वक्त आप घर पर हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर रास्ते में कहीं जाने के लिए निकले हो। आप जहां भी हैं, आकाशवाणी धर्मशाला आपके साथ है। आपकी पसंद के गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। फिल्में हैं हमारी पसंद की। 0182224391 फोन कीजिए इस नंबर पर और हम संग जुड़ जाइए और अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं और अपनी फरमाइश भी हमें बताइए।

0: हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, फोन कॉल ड्रॉप हो रही है श्रोताओं, और मौसम भी इसकी वजह हो सकता है, और सिग्नल भी मौसम की वजह से कई बार फ्लक्चुएट करता है। तो कोशिश कीजिए फिर से दोबारा हमसे जुड़ने की। 01892224391 ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज का नंबर।

0: हेलो जी श्रोताओ, आप हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और मौसम की वजह भी हो सकती है, नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, और हिम्मत नहीं हारनी है, फ़ोन लाइंस अभी भी खुली है और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपका फ़ोन हमें मिलेगा, आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। कोशिश करते हैं अगले श्रोता से बात करने की। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, नाम बताएं और फिल्म बताएं जल्दी से। हेलो जी, हम श्रोताओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं श्रोताओं, मनोरंजन का कार्यक्रम है ये और फ़ोन कॉल बेशक ना आए, हमारी बात आपसे ना हो पाए, लेकिन श्रोताओं के साथ हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं और कोशिश हमारी रहती है कि उनका मनोरंजन जो है उसमें कोई

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं जल्दी से और फिल्म का नाम बता दें, किस फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी मुझे गीत सुना दीजिए आप, ये पुरानी फिल्म के गीत मिल जाएंगे मैडम?
0: आवारा संगम, मिलन, शोले, सरगम।
1: शोले फिल्म का सुना दीजिए
0: जी। कोई भी गीत चलेगा, नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं?
1: जब तक है जान लोकेंद्र वर्मा
0: जी। लोकेंद्र जी जी, कार्यक्रम में कॉल के लिए शुक्रिया, आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी, बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: जी जी जी जी मैडम जी।

0: कार्यक्रम है हेलो धर्मशाला। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताएं, नाम बताएं जल्दी से।
1: मैं नाम बताएंगे हाजी
0: जी। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैं आलम से तोड़ू का मैं आई आई आई आई आ जा वाला
0: जी। फिल्म का नाम क्या बताया आपने?
1: लव स्टोरी
0: जी। लव स्टोरी फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे जी। ये श्रोता है हमारे, इनको हम लव स्टोरी फिल्म का गीत सुनवाएंगे। इस गीत के बाद कॉल श्रोता कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन लाइन में कुछ दिक्कत की वजह से हम उनसे नहीं कनेक्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, और हम तो हैं ही आपके साथ और आपका मनोरंजन कर रहे हैं फिल्मी गीतों के साथ।

हेलो धर्मशाला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। आयरा भी हमारे श्रोता ने फरमाइश की लव स्टोरी फिल्म के गीत के लिए, लेकिन हम जो फिल्म लेकर आए हैं वो है 1942 लव स्टोरी।

लेकिन श्रोता फोन लाइन में दिक्कत की वजह से श्रोता हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और इन श्रोता का कॉल लगा तो इनको निराश हम नहीं करेंगे, इनको इनकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी जल्दी से नाम और फिल्म का नाम बता दें।
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
0: जी फिल्म
1: सरगम का
0: जी सरगम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कॉल के लिए शुक्रिया जी।
1: ओके मैडम, थैंक यू।

जी हाँ दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज की महफिल में अपनी पसंद की रंग भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन श्रोताओं की कॉल हम नहीं आज रिसीव कर पाए फोन लाइन में दिक्कत की वजह से, उनके लिए उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मुलाकात होगी नई फिल्म

सुने गीतों के ऑप्शंस के साथ और आपकी पसंद के साथ। तब तक मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, क्योंकि जिंदगी जब संगीत के साथ होती है और मुस्कुराहट साथ चलती है तो सफर थोड़ा और खूबसूरत और आसान हो जाता है। प्रोग्राम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतों के कारवां का। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहरा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के लिए संगीत दिया है विजू शाह ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सवारियां रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।

0: नमक हलाल फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।
1: पट

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से ये गीत। गायक कलाकार हैं विनोद राठौड़ और अमित कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है अशोक चौधरी।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अंकुश संदल की आवाज में ये लोकगीत।

हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह की आवाज में ये लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गू पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कल धर्मशाला

0: पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पैकेज के तहत राज्य सरकार अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की बजाय 7.5 लाख रुपए देगी। इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें जैसी सामान खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को अब कुल 8.5 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी।
1: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन पलंग बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
0: अपने कांगड़ा दौरे के दौरान कल मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या बढ़ा रही है। प्रदेश में 330 नई पीजी सीटें बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 100 पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी, जिससे टांडा चिकित्सा महाविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें भी स्थापित की जा रही है, ताकि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर या निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संतुति होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। चंबा जिला में डलहौजी के लाहड़ में आज सुबह निजी कार के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में सभी एक ही परिवार के लोग थे, जो चंडीगढ़ से वापस घर लौट रहे थे। डीएसपी मयंक शर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा शवों को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है और हादसे की जाँच की जा रही है। प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलो की दर से 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक की जाएगी। इस योजना के तहत सिडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 31 अगस्त तक की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रोसेसिंग ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरा की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 21 नवंबर से शुरू होगी। सेब खरीद के लिए इस वर्ष प्रदेश भर में 42 कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से 6ठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों और महंगाई भत्ते की किश्तों को इसी माह जारी करने की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम शर्मा ने कहा है कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 8 अगस्त को शाहपुर में 18 पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों में 31 जुलाई तक 6ठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों के भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों को संवेदनशील माना है। आज 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इधर चंबा जिला में देर रात भारी बारिश से कई जगह से नुकसान की सूचना है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेल में नाले में आए भारी मलबे से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है और राजमार्ग पर यातायात बंद हो गया है। वहीं सुल्तानपुर मोहल्ले में भी भारी वर्षा से घरों और

0: दुकानों में पानी व मलवा भर गया है, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए हैं। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने और व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर हमारा आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है धीरज शर्मा ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुशल कुमार व साथियों को।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं ये डोगरी लोकगीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
2: जी।
3: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
3: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
3: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
3: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
3: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
3: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
3: और यदि NCERT की

0: पाठ्य पुस्तकों का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती?

0: उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते
3: नमस्ते शिखा।
4: अरे दीदी जी, आप
3: आइए आइए।
4: नमस्ते बहन जी।
3: नमस्ते, यहाँ बैठिए
4: जी,
3: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
4: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
3: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
4: हाँ ये तो है।
3: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
4: राम राम दादा।
5: हाँ,
4: कैसे हैं आप।
5: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
4: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
5: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
4: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
5: अच्छी, और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
4: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी, जी, जी।
5: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
4: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
4: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
2: दीदी लता, दीदी लता।
4: लता
6: जी। दीदी।
4: क्या ये लता।
6: जी दीदी।
4: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
4: अच्छा।
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
4: हुँ?
6: हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
4: हुँ?
6: सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
4: अच्छा
6: जी दीदी।
4: लता, ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं।

0: है, ठीक।
1: हाँ, नमस्ते दादा।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: क्या बातें हो रही हैं बेटी से।
0: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद
1: हाँ
0: दिखाए।
1: दादा, और खासकर लता।
0: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
1: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
0: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही
1: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे
0: हैं।
1: और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि
0: हाँ, बिल्कुल।
1: नहीं? और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कर सकता है भला?
0: नहीं जी
1: तो
0: नहीं।
1: दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
0: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
1: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
0: वो तो बहन जी।
1: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
0: वो
1: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
0: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है।
1: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
0: हैं?
1: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
0: हो
1: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
0: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
1: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा,
0: जी
1: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
0: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
1: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है, आ जाना।
0: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। लंदन देखा, परदेश फिल्म से ये गीत हमने लिया है, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णा मूर्ति।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज मैं हूं आपके साथ रीना। आज का अर्जुन इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म फूल बने अंगारे से। ये खूबसूरत सा संगीत है बप्पी लहरी का। गीतकार हैं अनजान।

0: भाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं विजय पथ फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार हैं अलीशा चिनॉय। गीतकार हैं श्याम अनुरागी।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सैलाब फिल्म से ये गीत। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है बपी लहरी ने और गीत गाया है अनुपमा देशपांडे ने।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। रीना को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सखी सहेलियों का कार्यक्रम सुनो सखी।

जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जी हाँ सखियों, सुख दुख, अच्छा बुरा और खुशी और गम जिंदगी के पहलू हैं, और एक के बिना दूसरे का हम अनुभव कभी नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हर पल से सीखें और हंस

0: से मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी बिताएं। और ये खूबसूरत सी सखियां थी मेरी प्यारी सी सखियों के लिए, और इन्हीं के साथ स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। और बता दूं कि आज मैं हूं आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मंगलवार है आज, और जैसा कि आप सभी जानती हैं, मंगलवार का ये खूबसूरत सा सफ़र रहता है सजीव फ़ोन इन, यानी कि फ़ोन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं, बातें कर सकती हैं और साथ ही साथ सुन सकती हैं खूबसूरत से गीत उन फिल्मों से जिन्हें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ हमारे स्टूडियो का नंबर जो आपको करना है डायल। जी हाँ, स्टूडियो का नंबर है 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और आज की जो हमारी चुनिंदा फिल्में हैं उनके नाम भी जल्दी से आप नोट कर लें। फिल्में हैं करण अर्जुन, डर, धड़कन, हसीना मान जाएगी, जीत, जुदाई, खलनायक, लज्जा, राजा और रंग। तो यह है सखियो हमारी आज की फिल्में, और देखते हैं हमारी आज की पहली कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: मैं मीनू बोल रही हूँ। मैं
0: जी, मीनू जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम डडम से।
0: क्या करती हैं?
1: कुछ नहीं मैम, हाउसवाइफ।
0: हाउसवाइफ है। और बरसात का मौसम चल रहा है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आजकल मीनू?
1: जी मैम बहुत ज़्यादा।
0: जी, जैसे कि?
1: जैसे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
0: और बाहर निकलना बहुत ऐसे इस मौसम में गंदा सा लगता है ना?
1: जी मैम।
0: जी, और घर पर रहकर क्या कुछ किया जा रहा है फिर?
1: बस कुछ नहीं मैम, एफएम सुन रही हूँ।
0: जी, एफएम सुन रही हैं। रसोई नहीं महक रही कुछ अच्छे अच्छे पकवानों से, बारिश का मौसम है।
1: जी मैम।
0: जी, क्या कुछ बनाया जा रहा है फिर?
1: आजकल तो आपको पता ही है, पतरोड़े वगैरह ही बनते हैं ज्यादा। जी मैम।
0: तो बरसात का खूब मज़ा ले रही हैं?
1: हाँ जी मैम।
0: जी बिल्कुल, अच्छी बात है, हर मौसम का हमें मज़ा लेना चाहिए, और कार्यक्रम का मज़ा हम लेते हैं गीत संगीत के साथ। मीनू, तो आज की फिल्में आपने सुन ली?
1: जी मैम।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं फिर आज?
1: मैम जुदाई का सुना दो कोई भी।
0: कोई सा भी, सभी गीत बहुत अच्छे हैं है ना? कोई फरमाइश बता दीजिए आप।
1: कोई सुना दो आप कोई भी।
0: ठीक है, आपको ठीक है, आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: नाम दर्शना कुमारी।
0: जी दर्शना जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी, आपने पहचाना नहीं, हमने पहचान लिया।
0: जी,
1: आप
0: हमने
1: नीना
0: पहचान
1: मैडम जी
0: लिया
1: है
0: आपको।
1: ना?
0: मुकेरियां से बात कर रही हैं आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: मुकेरियां के क्या हाल चाल है? मौसम किस तरह का है?
1: मौसम ऐसे ही है, गर्मी है मैडम जी।
0: अच्छा, बारिश नहीं हो रही?
1: बारिश बहुत कम हो रही है।
0: अच्छा, और इस मौसम में फिर क्या किया जा रहा है?
1: कुछ नहीं, दुकान पे बैठे हैं, और क्या करना है हमें।
0: कार्यक्रम नहीं सुन रही?
1: हाँ, कार्यक्रम सुन रहे हैं मैडम जी।
0: जी, तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
1: किन्ना मान जाएगी।
0: हसीना मान जाएगी।
1: हाँ जी,
0: देखी है आपने ये फिल्म?
1: हाँ जी, देखी
0: देखी है आपने ये फिल्म?
1: तो नहीं है लेकिन गाने
0: गीत सुने
1: तो मैं
0: हैं?
1: सुनते रहती
0: अच्छा,
1: है ना।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगी
1: टाइटल
0: आज?
1: गाना सुना दो मैडम जी।
0: टाइटल गाना?
1: हाँ जी,
0: ठीक है, आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट पर है, और शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम जी। ओके।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: हम बात कर रही हूँ ज्योति
0: जी। कहाँ से?
1: हिमाचल से ज्योति बात
0: हिमाचल
1: कर रही
0: में कहाँ से ज्योति?
1: पठानकोट में पास पड़ता है ना हिमाचल।
0: हाँ जी,
1: मैं वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम जी।
0: अच्छा जी, क्या करती हैं और आप?
1: बस मैडम जी घर का ही काम कर रहे हैं।
0: घर का ही काम करती हैं और
1: मैडम
0: शौक नहीं
1: जी
0: रखती कुछ?
1: बस शौक यही है, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो,
0: अच्छा,
1: घर का ही।
0: और ये
1: हाँ
0: अगर
1: जी,
0: शौक नहीं है ये तो हमें तब भी करना पड़ता है ना?
1: जॉब नहीं हो तो वो भी करना पड़ता ही है अपने घर पे।
0: जी बिल्कुल, तो शौक की बात कर रही हूँ। शौक क्या रखती हैं जिससे आपको खुशी मिलती है? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको करना अच्छा लगता होगा।
1: मैडम जी वैसे सिलाई का काम करती हूँ, वहाँ पे कोई पास में आ जाए और बातें तो भी उससे करो तो पास हो जाता मैडम जी।
0: जी, सिलाई का काम करती हैं तो अपने ही कपड़े सिलती हैं या औरों?

0: जी हाँ सजी, फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो सखी रीना के साथ। हेलो
1: हेलो मैम
0: जी, कार्यक्रम महिलाओं के लिए है।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मैम मेरा नाम अक्षरा है और हाँ चेतिया से बात कर रही हूँ। थैंक
0: अक्षरा जी, नाम तो आपका बहुत ही सुंदर है
1: यू मैम।
0: जी। क्या करती हैं आप?
1: मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं प्लस टू मैम। हाँ
0: अच्छा, तो
1: जी
0: आजकल तो छुट्टियां होंगी आपको, क्या
1: हाँ जी।
0: कुछ किया जा रहा है छुट्टियों में?
1: बस छुट्टियों में मामा के घर मतलब घूमने जा रहे हैं और छुट्टियां मना रहे हैं घर में। वो पतरोड़ वगैरह बन रहे हैं,
0: अच्छा,
1: उसके
0: तो
1: मजे
0: खाने
1: लेने
0: पीने
1: जा
0: का
1: रहे
0: और
1: हैं। हाँ
0: घूमने का मज़ा लिया जा रहा है छुट्टियों का, है ना?
1: जी
0: और बहुत अच्छा लगता है मामा के घर जाने का, छुट्टियों में
1: हाँ
0: ही ये
1: जी
0: मौका मिल पाता है
1: जी
0: जी। और इसके साथ क्या कुछ करना अच्छा लगता है? स्टडी कैसी चल रही है आपकी?
1: अच्छी जा रही है।
0: प्लस टू के एग्ज़ाम्स भी, मतलब तैयारी जो है वो काफ़ी पहले से उनकी करनी पड़ती है ना?
1: जी
0: तो अच्छे से कीजिएगा अक्षरा। और बताइए, आज कार्यक्रम में आपने कॉल की है, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?

0: धड़कन का कोई भी सॉन्ग सुना दो
1: जी, कोई सा भी।
0: हाँ जी
1: जी, अक्षरा आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे, लेकिन पहले कुछ संदेश है वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपकी फरमाइश। शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
5: दादी कौन सा प्लांट है?
6: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ नूतपुर से।
0: जी। साक्षी कैसी हैं आप?
1: ठीक हो? आप बताओ,
0: जी हम
1: आपसे बात नहीं हो पा रही थी ना, मैंने कितनी बार किया, नहीं उठा रहे थे आप।
0: अच्छा, तो अब उठा लिया। और क्या कुछ कहना चाहती हैं साक्षी?
1: कुछ नहीं, ठीक हो? आप बताओ,

0: जी
1: से बात कर हो जाती तो दिन बन जाता है।
0: वाह क्या बात है, हमारा भी दिन बन जाता है।
1: नहीं आपसे बात करने का इंतजार रहता मेरे को हर मंगलवार
0: जी।
1: पर दूसरों को भी मौका देना चाहिए ना।
0: जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने साक्षी, और बहुत अच्छी बातें आप करती हैं, है ना। और कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: मैंने तो नाम फिल्म का सुनना था पर आप किसी और ने सुन लिया, आप मेरे को कोई और ही सुना दीजिए।
0: जी कौन सी फिल्म? हमारे पास फिल्में हैं रंग, राजा, लज्जा, खलनायक, करण अर्जुन।
1: रंग फिल्म का सुना दीजिए कोई अच्छा सा।
0: कौन
1: टैटली?
0: हाँ जी
1: टैटल सॉन्ग हो ना रंग फिल्म का।
0: जी इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं साक्षी, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम जी।

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस, TNC अप्लाई।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, कौन और कहां से बात कर रही हैं?
2: जी सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल से।
1: जी सविता जी, कैसी हैं आप?
2: जी अच्छी हूँ मैम, और आप ठीक हो?
1: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और कैसी चल रही है आपके यहाँ बरसात?
2: जी बरसात तो हो रही है मैम, गर्मी भी हो रही है, जब धूप निकल रही है।
1: जी हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बारिश के बाद, है ना?
2: हाँ जी, हाँ जी मैम।
1: जी तो इसमें ध्यान रखें अपना, बरसात के दिनों में भी, और ज्यादातर बाहर ना जाएं।
2: हाँ जी मैम।
1: जी सविता जी, कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
2: जी करण अर्जुन का सुनवा दीजिए मैम, एक मुंडा मेरी हो हाड़दा।
1: जी जी, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने सविता जी, और आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। सुनिए।

तो सखियो ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और माफ़ी चाहेंगे उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। तो यही कहूँगी अगले मंगलवार ज़रूर अपने इस खूबसूरत से कार्यक्रम में समय से कॉल करें और अपने इस खूबसूरत से कार्यक्रम का हिस्सा बनें। और अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते चलते आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill.
2: I appeal that no matter how much deadlock there may be or how big the issue is, I request the honourable members that there should be no disruption during question hour. A positive message should go out across the entire country that discussions and dialogue take place in the parliament.
1: As the uproar continued, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution was also presented. The government has approved the Reserve Bank of India RBI's proposal to introduce polymer banknotes in the denominations of 10 and 20 rupees. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Finance

0: Pankaj Chaudhary informed that RBI had sent a proposal to the government for the introduction of 1 billion pieces each of 10 and 20 rupees polymer banknotes for field trials. He said regular issuance of polymer banknotes in these two denominations will be done after successful completion of field trials. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinmool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India NCPI, also attended the alliance meeting. In Assam, the flood situation has shown further improvement, with the number of affected districts coming down to 6. According to the latest official report, Shivasagar, Golaghat, Charaideo, Jorhat, Nagaon and Kamrup metropolitan districts continue to be affected by the deluge. Rescue and restoration work is underway. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. Sharing the information through a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government in assisting those affected. He also prayed for everyone's safety and well-being. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall conditions will continue over parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbha during the next 2 days. At least 20 people were killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In a social media post, JAAC said the long march caravans had reached Rawalkot. The march was organized after talks between JAAC and the Pakistani authorities reportedly failed to reach a mutually acceptable outcome. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kosari also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in the afternoon session today. The Sensex added 79 points to 76,915 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफर की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूं, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है।

बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है इस संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफ़ी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है। तो उन वादों की बातें करते हैं, लिखिए मुझे संदेशों पर और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहाँ उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत ज़ोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां। मैं लिखी हुई दास्तां हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं वो गुजरे ज़माने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटड़ा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज़ में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद भी लीजिए, और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई। अब तो बुढ़ापा है, रोज़ का वादा फिर वादा।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी ज़रूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किया है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा और रख रहे हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूँ इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ, और एक वादा विविध भारती के साथ किया है सदा साथ रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें, और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ बिल्कुल, ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है, और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफ़र में 25 मिनट लेट हो गए, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार, 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पट ब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूँगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का, और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है, जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द ही लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं।

सोचते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है कभी धूप भी आ रही है और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफ़ी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत सफ़र में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ, आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है अपनों के लिए, यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत है उनका मज़ा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफ़र का मज़ा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफ़र में जो है इंटरनेट महाराज आँख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत

0: आंखों का इस मस्ती में सूझे न, क्या कर डालूं हाल मोहे समा।
1: कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफ़र की वादा से, और अब ख़त्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

कुछ तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

0: चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: This was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के

0: जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
2: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
3: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और

0: मामई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नग में यहीं संपन्न होता है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। शिमला में आज एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 156 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है।
1: हमने स्कूल एजुकेशन पर मेनली फोकस किया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज 150 स्कूल्स में हमने सीबीएसई स्टार्ट किया जो गवर्नमेंट स्कूल थे। जो ड्रॉप आउट रेशियो है गवर्नमेंट स्कूल में, जो पिछले 3 साल से आप स्टडी कर रहे थे, वो ड्रॉप आउट रेशियो

0: गांव के स्कूल में, विलेज स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 7% थी, जिसे बढ़ाने में समय समय पर सभी सरकारों ने योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। कांगड़ा जिला के नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेज रही है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने का अवसर मिल सके। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 2-3 अक्टूबर को घुमारवीं का सीर उत्सव आयोजित किया जाएगा। वे आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय घुमारवीं में सीर उत्सव आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि सीर उत्सव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित बनाने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीर उत्सव के दौरान रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी सिंह संजय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लोकसभा में सांसद सुरेश कश्यप द्वारा देश में बढ़ते साइबर अपराधों और उन्हें रोकने के लिए स्थापित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की उपलब्धियों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। संजय कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के माध्यम से बैंक, दूरसंचार कंपनियां, भुगतान एग्रीगेटर और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा जिले में बीती रात हुई भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है और परेल में नाले से आए भारी पानी से कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं सुल्तानपुर मोहल्ले में लोगों के घरों व दुकानों में बारिश का पानी व मलबा भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में बारिश का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका के चलते सिरमौर जिले के पामटा साहिब उपमंडल में आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 108 संपर्क सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 9 बिजली ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सिरमौर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सतीश शर्मा, वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का। बीते कुछ दिनों से सिरमौर जिला में जहां बरसात की वर्षा का क्रम जारी रहा, वहीं जिला स्तर पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां जारी रहीं। सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्मार्ट मीटर, जननी सुरक्षा योजना, एमपी लेड्स तथा मिड डे मील सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके बाद सांसद ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला सिरमौर में बिजली व्यवस्था के व्यापक आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की योजना के तहत 194 करोड़ से अधिक की राशि खर्च

0: की जा रही है। ये परियोजना सिरमौर जिले की विद्युत व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उपायुक्त सिरमौर व आयुक्त मंदिर न्यास त्रिलोकपुर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में मंदिर न्यास की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 का 23 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट अनुमोदित किया गया, जिससे मंदिर न्यास द्वारा विकासात्मक निर्माण तथा धर्मार्थ कार्य किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि मंदिर में न्यास द्वारा नकदी गणना के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर दी गई है, जिसके अनुसार सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार तथा शुक्रवार को नकदी गणना नियमों के अनुसार पारदर्शिता के साथ की जाएगी। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर के 270 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही की वित्तीय सहायता के रूप में 24 लाख रुपए की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन अब स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जो गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं और बीमारी व शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके उपचार व दैनिक जीवन यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके। बदलते जलवायु परिदृश्य और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन संरक्षण व संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार न केवल वन क्षेत्र के विस्तार पर बल दे रही है, बल्कि जनभागीदारी को इस अभियान का आधार बनाकर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर में वर्ष 2024-25 के दौरान 55 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण कार्य किया गया। इस अवधि में 27,500 पौधे लगाए गए, जिन पर करीब 1,03,50,000 रुपए खर्च किए गए। योजना की सफलता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 88 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान के तहत जिला सिरमौर में 59 से अधिक पौधे रोपे गए। हजारों लोगों ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। जिला दंडाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मानसून के दौरान जनधन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों और अन्य गैर आवश्यक कार्यों के लिए होने वाले सभी प्रकार के पहाड़ी कटान हिल कटिंग पर 31 अगस्त तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए। वर्ष 2023 और 2025 में भारी वर्षा, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई थी। वर्तमान मॉनसून के दौरान भी मौसम विभाग द्वारा समय समय पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिस जिले में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है, इसलिए सतर्कता के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सिरमौर जिले की चिट्ठी। लेखक थे सतीश शर्मा और वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में
1: जी। तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सकें। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं।
1: जी हाँ।
0: तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

तो आरती, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में, तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत

0: और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है।
1: बिल्कुल, और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से जो इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफ़ेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल है।
0: बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यही है कि हम महिलाएं जो हैं वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूँगी हमेशा आप रेगुलर एक थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो कल्पना करो क्या होगा, है ना।
5: इंसान तो नहीं रह सकता,
4: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है, कहते हैं ना पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
5: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
5: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
4: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का

0: संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप हैं। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीज़ें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो एक पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
1: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने,
0: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते हैं, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा,
1: जो बहुत खुशी मिलती है,
0: बहुत खुशी मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार कराएगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीज़ें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर, वहाँ की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम, बताओ?
1: वो सूख जाएगा, वो जो हमने लगाया बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियाँ हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
0: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
1: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
0: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
1: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
0: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: डकैती की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल, वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के, हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज़ बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, है ना, कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती हैं तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया तो इस वजह पे।
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है जो छोटा होता है ना उसको ये एक फ़ायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे, वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूँगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज़्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हों या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर और झगड़े भी। लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी है और हमारे खानदान में बड़ी ही है, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो है
0: ना। तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल ख़त्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े। और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो है, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए, नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या दो मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मज़ेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फ़ायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहाँ लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ उससे कमज़ोर हूँ, पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूँ।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत ज़ोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफ़िन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीज़ें हो ही जाती हैं ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात
1: जी। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं, और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाएं। तो बिल्कुल प्लीज़ कल उनको खाना दीजिए।
0: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए। और एक साथी लिखते हैं पेट

0: पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफ़िन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
1: और जो एक और मैं श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी ज़ोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं, और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
0: तो चलो एक इसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेज़ी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें ख़ास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं।
1: और
0: और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज़्यादा थी, अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
1: खूब गाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली, पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंशी वाले का इशारा नहीं आया। बंशी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई, अभी तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंशी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
0: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़िया पियो के लिए गुड लग लांदी है।
0: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
0: पिताजी के लिए नसीब लाती,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर।
0: ये
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
0: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
0: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
0: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों, क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
0: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
0: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
1: 13 साल 14

0: जी
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
0: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
0: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए, कहां रहे और वो
1: अलग
0: रेल,
1: अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
0: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बम्बई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत ज़रूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
0: हाँ
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
0: जी
1: जो
0: जी
1: हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूँ, गीत गाऊँ, गीत को परफॉर्म करूँ, गीत की धुन बनाऊँ, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू उसको पूरा करेगा।
0: क्या प्यारी बात है यार, वाह वाह वाह वाह वाह
1: मांगा नहीं है, आप
0: वाह।
1: सोचो पूरी दुनिया मांग रही है, अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दो तो मैं यहाँ चढ़ा, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
0: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां
1: हाँ
0: लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
0: कृष्ण
1: कृष्ण
0: कन्हैया,
1: कन्हैया,
0: क्या बात है, ये
1: क्या
0: गाना भी
1: करें।
0: बख्शी साहब
1: और
0: का
1: सर
0: है।
1: वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
0: हाँ
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना। सर ये क्या
0: वाह
1: लाइन है यार, आप सोचो
0: वाह
1: हम क्या
0: वाह।
1: क्या नहीं चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका आज मेरा होता,
0: क्या
1: इससे
0: बात
1: बड़ी
0: है,
1: दुआ है क्या दुनिया में।
0: नहीं
1: हाँ
0: नहीं
1: बी
0: क्या
1: माई फ्रेंड,
0: गजब का ख्याल है ये।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार ये तो मेरे जैसा है, अपना जैसा है यार।
0: वाह वाह वाह।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन माय जॉब, आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, शाकिर खान। शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए। क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर? ही सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ।
1: गजब।
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माय वॉइस हैज टू बी हिडन। अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है,
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है।
0: कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा।
1: बहुत गहरी बात है।
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने। मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है, यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी। तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े। तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए। ही वेंट एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है, क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया। कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएजुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स। प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस, क्यों वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
1: साउथ की फिल्म थी।
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दिस आर नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो।
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं,
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्शी साहब ने गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
0: अरे कमाल है वो तो,
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का, अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ, और सुनाया, 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
1: बोरीवली में,
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
1: तो
0: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे देते थे, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन आपको नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, रोशन साहब
1: बिल्कुल
0: 1956, रोशन साहब ने ऐसे ही

0: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। मैंने सर आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वाला नगर, तो वहाँ चले गए और ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊँ तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में। और रास्ते में छतरी भी टूट गई, बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था?
1: पागल हो
0: इतनी
1: गया?
0: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था।
1: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए ज़रूरी था।
1: क्या
0: वो
1: बात
0: सारा
1: है!
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ। तो
1: हाँ,
0: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह! यहां
0: और
1: से शुरू होता
0: बेदाग
1: है
0: के गाने क्यों ज़रूरी हैं,
1: जी।
0: ये जो किस्सा है क्यों ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
0: तो
1: उसमें बख्शी साहब को
0: जब
1: बीच
0: जब
1: में मौका
0: राजेश
1: मिला था।
0: रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज़ हैं, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू तो रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह!
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखना भूल गए हैं, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन,
1: कितनी
0: कितना
1: इज्जत!
0: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो
0: देवर,
1: जालिम, गुजरा जमाना
0: हाँ
1: बचपन का।
0: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी।

0: तो ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया ना निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा गए रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, गाने सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, उसको बहुत पसंद आया। बोला वाह तो बाकी कितने गाने लिखो, इसी के साथ लिख के लाया।
1: अरे कैसे
0: तीनों का, चारों गाने लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने
1: जी।
0: हाँ सुनाओ, सुना रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: वाह
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आया ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने देंगे, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
0: उनकी पहली हिट थी
1: जी,
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा, उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: 1-2 गाने थे हिमालय की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे, जो चली थी, वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: हूँ।

0: नौकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाना लेकर रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है, वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ़ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन, मैं 50 अंतरे लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे,
0: हाँ
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3, 4, 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब इसमें से चुन लो, जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रुको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबड़ के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, के उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफ़ी बार फ़ोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले, बोले आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था, वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरीक्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरीक्रॉस रोड से लेते थे, और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे।
0: हाँ, वर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर अनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, तो सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्हें ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू यू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू LP, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपये का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम? किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ, बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं। तो इज टू रबिश इट, यू नो, कि नहीं नहीं क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया, खत्म हो जाऊंगा। उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती। चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, RD पे डाल दो, LP पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था। तो वो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है।
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब

0: है।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: बख्शी साहब की सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहाँ का टॉप जॉकी है, तो आप यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उनको तो उर्दू वाज़ द सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तुम उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कल

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया। ही सेड यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हंस बख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।
2: तो हम चलते हैं,
3: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे
3: जुम्मे रात को।
2: हाँ हाँ आधी रात को।
3: कहाँ?

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी।
2: चलो,
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से 5 बजे हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल

0: by 25 kilovolts electric traction system to a more advanced 2 by 25 kilovolt system. In shooting, India's Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समय हुआ है 5:10 और ये समय रहता है फिल्मी भजनों का, तो आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

0: किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई? तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
0: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
1: मेरे पास जो था ले आई, दे दूं मुझको कृष्ण कन्हाई।
0: दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना? चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
1: स्वामी।
0: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
1: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन हम आपको ले जाते हैं सैर सपाटे पे। तो आज कौन सा वो शहर है जहां हम आपको लेकर जाएंगे, बताएंगे इस गीत के बाद।

तो स्वागत है युवा साथियों एक बार फिर से आपका युवा मंच कार्यक्रम में और सैर सपाटा में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी और पंजाब तथा हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसे भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो चंडीगढ़ शहर के प्रसिद्ध स्विस फ्रांसीसी डिज़ाइनर और वास्तुकार चार्ल्स एडॉल्ड जेनरेट ने इसे डिज़ाइन किया था, जिन्हें की दुनिया ले कॉर्बूज़िएर के नाम से जानती है। इन्होंने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया था और कई प्रमुख सरकारी इमारतों को भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। उनके साथ पियरे जेनरेट, जेन एंड्रयू और मैक्सवेल फ्राई ने भी इस शहर को डिज़ाइन करने में उनकी मदद की थी। चंडीगढ़ की 1950 के दशक में स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल लगभग 114 वर्ग किलोमीटर है। भारत के विभाजन यानी 1947 के बाद पंजाब की नई राजधानी की आवश्यकता हुई, इसके लिए चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना तथा स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो और भी बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में एक गीत के बाद।

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सांवरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस, TNC अप्लाई। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

सैर सपाटा में आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के बारे में। अगर हम वहाँ पर पर्यटन स्थलों की बात करें तो सुखना लेक सुंदर कृत्रिम झील है, रॉक गार्डन है, कवाड़ सामग्री से बनी हुई अनोखी वहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन एशिया के बड़े गुलाब उद्यानों में से एक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वहाँ पर घूमने के लिए है, कला और साहित्य का इतिहास का महत्वपूर्ण संग्रहालय यानी गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी है। चौड़ी और साफ सड़कें हैं चंडीगढ़ की और उसको सेक्टरों में अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें व्यवस्थित शहर योजना के अनुसार उसे बनाया गया है। हरियाली और पार्कों की भरमार है, हर चौराहे पर आपको खूबसूरत फूलों का अलग अलग तरह के फूल और हरियाली मिल जाएगी देखने को। उच्च साक्षरता दर और बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए चंडीगढ़ प्रसिद्ध है। तो ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक गीत।

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं सैर सपाटा में चंडीगढ़ शहर के बारे में। चंडीगढ़ का नाम पास स्थित चंडी मंदिर से पड़ा है। इसे भारत के सबसे सुव्यवस्थित और स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, और यही कारण है कि इसका उपनाम सिटी ब्यूटीफुल भी रखा गया है। शहर को मूल रूप से लगभग 5 लाख लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन आज इसकी आबादी उससे कहीं अधिक बन गई है। जैसे कि हमने बताया था, सुखना लेक है वहाँ पर, तो सुखना लेक में आप सुबह की सैर के लिए बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे आप बैठ सकते हैं, सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। रॉक गार्डन में नेक चंद द्वारा बनाई गई अनोखी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और शॉपिंग करने की बात करें तो सेक्टर 17 जो है उसमें आप और उसके आसपास की मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन में विभिन्न प्रकार के गुलाब और हरियाली आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा ये जो रोज़ गार्डन है बहुत बड़ा है, पूरा दिन एक लग जाता है शायद अगर आपने अच्छे से घूमना है, एंजॉय करना है तो। और शाम की रौनक, खरीदारी और स्थानीय भोजन का आनंद आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, सुनते हैं गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि शाम 6:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे शाम 6:05 से। किसान व बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर और किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन करते हैं रात्रि 7:10 पर। नौ बजकर 15 पर एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे एक ही गायिका द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतां दी आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 10:30 पर सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:00 संसद समीक्षा, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज 8:09 रात्रि 9:00। मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही आपको सुनवाई जाएगी रात्रि 10:00। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:00 को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 2300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद आज तरहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सैंज और बंजार घाटी की विभिन्न सड़कों पर सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 20 नई सड़कों का निर्माण व विस्तार किया जा रहा है।
1: हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, यहाँ पे रिमोट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है। तो उस दृष्टि से हमारा जो ये सैंज घाटी है कि यहाँ की बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 53 करोड़ रुपीज जो है वो हमारे रेस्टोरेशन के लिए इस क्षेत्र में दिए गए, जिसमें कई डंगे लगने हैं, कई जगहों पे पैचवर्क होना है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वे प्रदेश की जनता को बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के मित्रों ने चिकित्सा अधिकारी और नर्स की भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनियां बनाई, जिस पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी बेहद तल्ख टिप्पणी की और कई बार इन भर्तियों पर रोक लगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह हाल ही में हुई पुलिस भर्ती में परीक्षा में हुई नकल के मामले में भी सरकार ने चुप्पी साधी और जांच को रोक दिया। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा जिले के सुल्तानपुर मोहल्ले में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों व दुकानों में बारिश का पानी व मलबा भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है और अनेक सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: देर रात 2 बजे शुरू हुई बारिश ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और चंबा जिला के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई। लोगों को भारी बारिश के बीच घरों से बाहर रहकर रात गुजारनी पड़ी। वहीं बारिश के बीच एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की जान चली गई। बात की जाए जिला के वर्तमान हालात की तो इस समय जिला में 100 के करीब सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। वहीं 100 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर और 25 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने में अभी समय लगेगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में आधुनिक व वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल व उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय एक्सपो में निर्णायक मंडल ने प्रदेश के स्टॉल को नवाचार, प्रस्तुतिकरण तकनीकी जानकारी, फसल विविधीकरण और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों के आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किया।

0: एक्सपो में देश विदेश से आए हजारों किसानों, कृषि विशेषज्ञों, उद्यमियों व नीति निर्माताओं ने हिमाचल प्रदेश में अपनाए जा रहे बागवानी मॉडल, जलवायु अनुकूल खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों के सफल प्रदर्शन की भरपूर सराहना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रादेशिक एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरमई सांझ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेमिसाल का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म का गीत।

0: चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं सदाबहार नगमे, कार्यक्रम सुरमई सांझ में। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए आंखें फिल्म का ये गीत।

आराधना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

गीत के साथ ही आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौज जागराए दिया।

0: मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान बागबान भाई भैन जो सारिया श्रोतियां जो किसान मित्र दी टियाले ते सांझी इस वेला प्यार भरी दो हथ जोड़ी के राम राम कने किसान साथियो अज चंचलो जी मेरे सोगी टियाले पर हैं चंचलो जी राम राम
1: राम राम किसान मित्र जी कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों जो मेरी तरफ ते भी प्यार भरी नमस्ते राम राम
0: जी। तो चंचलो जी संजय का यह बेला कने टियाले दे माध्यम से जलू हाँ अपने प्यारे प्यारे किसान बागवान सारे प्यारे प्यारे श्रोतियां सोगी जलू हाँ रूबरू होंगे हैं ना। देखा इदा एक जिसी हाँ बोलते ना अनोखा ही जड़ा सा एक अंदाज है कने एक जड़ा सा बड़ा जिसी हाँ बोलते ना कि बांका माहौल जड़ा सा बनी जाता कि हाँ संझ दी ऐसा बेला थोड़ा जहा समय जड़ा सा अपने किसान साथियों सोगी जड़ा सा बिताते टियाले के माध्यम से है ना।
1: हाँ जी तो बिल्कुल ठीक बोले कने हाँ दे किसान भाई कने किसान भैन भी पाला बैठे होंगे ना कि हाँ जेडे टियाले के सदस्य ने तीन आना है कने हाँ मनोरंजन करना है कने सोगी सोगी जानकारियां भी साझा करनी है क्योंकि किसान मित्र जी दिखा ना दे किसान भाई किसान भैन जेडे से कमे च दिन भर व्यस्त रहेंगे।
0: बिल्कुल हाँ जी व्यस्त रहेंगे हाँ जी हाँ जी कने देखा कार्यक्रम में मौजां ग्राएं दियां कने मौजां जड़ियां अजकल लगी ऐसा देखा भी बरखा बड़ियां खूब हो कर दियां ना कने बरसात का जड़ा सा ये मौसम है कने चौं तरफ दिखा जिसी हाँ बोलते ने इन दिन हरियाली हरियाली जिदा भी अहाँ दिखी है भी हरा भरा पूरा जड़ा सा अहाँ जड़ा सा आस पड़ोस गली मोहल्ला पूरे बन अहाँ की प्रकृति माता पूरी जड़ी से यौवन पर है ना
1: जी
0: कने जी चंचलो जी तो हूँ जड़ा सा कार्यक्रम जो अगे बधाते हैं कहना दिखा भी मैं दिखा करता कि तुम अपने हाथ से कोई जी जानकारी जी एक पकड़ी हो तो दसा भला तुम कौन दी जानकारी लेकर आए हो ने।
1: जी किसान मित्र जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले क्योंकि जालू भी हाँ टियाले पर आते हैं तो अपने किसान भाइयों का मनोरंजन तो करते करते सोगी सरकारी जानकारियां दे बारे च भी जानकारी जड़े से देंदे हैं
0: जी
1: तो अज जी सरकारी जी योजना है इसके बारे जी हाँ गल करनी से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कने अब संरचना विकास कोष
0: जी दिखा बड़ी बांकी जानकारी लेकर तो हाँ आज आए हो दिखा ये जड़ा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है इदा जड़ा सा उद्देश्य यही है कि अहाँ दे पशु जड़े से किन स्वस्थ रहन है ना
1: जी
0: जी।
1: तो किसान भाइयों दिखा सरकार जड़े से पशुओं वास्ते खुरपका मुँहपका रोग कने ब्रुसेलोसिस दे नियंत्रण कने उन्मूलन वास्ते राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जड़ी है सरकार द्वारा की गई है तो ये जड़ा कार्यक्रम है सह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है कने गल की जाए खुरपका मुँहपका रोग की तो यह रोग गाय भैंस भेड़ बकरी कने हाथी च होने वाला एक संक्रामक रोग है कने ये रोग खासकर दुध देने वाले जानवर जो ज़्यादा नुकसान जड़ा सा करता है
0: जी
1: तो दिखा अगर इस रोग के लक्षण की गल की जाए तो बीमार पशु जो तेज बुखार हो जाता मुँह च छाले कने घाव जड़े कि पशुओं के थणा कने खुर के बीच बनी जाते हैं कने ये घाव जड़े से बाद च फटी जाते कने इन जड़े से कीड़े पौने की संभावना जड़े से बनी जाती कने दुध जड़ा सा खासकर दुधारू गाइया जड़िया से दुध देना घटी जा लगभग इतना ये जड़ा रोग है इतना खतरनाक है कि अहां दी जड़ी दुधारू गाइया से 80% तक दूध देना जड़े से बंद करी दी हैं तो इस दे सोगी एक होर जड़ा रोग है ब्रुसेलोसिस तो इसके बारे च अगर हम गल करन तो ब्रुसेलोसिस रोग दी जड़ा है ब्रुसेलोसिस रोग है ये एक जीवाणु संक्रामक रोग है जड़ा कि जानवरों के सोगी सोगी इंसान जो भी नुकसान जड़ा से करता है।
0: हाँ जी
1: कने ये बीमारी आम तौर पर इंसान जो तालू फैलती अगर लोग जड़े से दूषित भोजन जी कि कच्चा मांस कने इस रोग से ग्रस्त पशु का दूध जड़े से पींदे हैं

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। मारुति सुजुकी एरिना, खुशियों की चाबी।
2: जी तो फिर तो सारे का कार्यक्रम के स्वागत है। लोग गीत बाद संदेश कने फिर तो जरा सा जानकारियां का सिलसिला हूँ टियाले पर जरा सा शुरू है। तो चंचलो जी गल ही है, बरसात का ये मौसम है,
3: कने
2: ये जरा बेला लग्या सह लग्या पौधा रोपण करने का, तो हाँ की कोशिश ये होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतने अहाँ जो सारे जो मिली जुली के जड़े से पेड़ पौधे इन दिना जरूर लगाना चाहिए हैं। कई की दिखा भी एक जो अगर अहाँ पेड़ दी अगर अहाँ गल करिए कोई भी रुख बूटा है तो कोई ना कोई जड़ा भी रुख है ऐसा अहाँ जो अपने जीवन च कुछ ना कुछ दे के जरूर जाता ही है ना, चाहे वह अहाँ दे घाय पतरा वाला रुख बूट है या कोई इमारती लकड़ी वाला है, औषधी पौधे वाला कोई रुख है या अहाँ दे फलदार पौधे हो ये या कुछ भी अगर नहीं है कोई भी पेड़ तो है अहाँ जिस कि अहाँ जिस बोलते ना ईंधन के रूप से अहाँ प्रयोग करते हैं तो गुल मिलाएगी।

0: बोलिया कन्नै ठीक बोलिया तुआं कि बरसात दे मौसम च हां जेह्ड़े भी पेड़ पौधे लगांदे न सै जेह्ड़े न सै खराब नहीं होंदे ना, क्योंकि तिन्हों पानी देने की जरूरत नहीं होंदी, कन्नै सै तिन्हों दी बढ़वार बड़ी जल्दी होंदी, कन्नै बड़े अच्छे तरीके ने सै जेह्ड़े सै बड़े होई जांदे। ते इस
1: हाँ
0: दे सोगी गल होर भी है कि पर्यावरण दे सोगी सोगी हां दे किसान बागवान भाई जेहड़े सै कुछ जमीन जियां कि तुआं बोलिया खिलियां होंदी तित्थू सै कुछ भी नहीं लगाए होंदे, तो तित्थू औषधीय पौधे लगाई सकदे ना। तो
1: बिल्कुल
0: कृषि
1: हाँ
0: जी बागवानी विभाग दे बागवानी विभाग जेहड़ा सै भी यही बोलदा कि अगर अहां दे किसान भाइयों की जमीन है तित्थू अगर उजाड़ वगैरह ज्यादा, क्योंकि अजकल बंदरा वगैरह की भी बड़ी उजाड़ है ना,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: अगर अहां दे किसान बागवान भाई जेहड़े सै औषधीय पौधे लगान तो ये समय भी बड़ा खरा लग गया। तो औषधीय पौधे लगान तो दो फायदे हो जाने, एक तो पर्यावरण च मदद मिली जानी, कने दूजा जेड़ा सै तिन्हां दी आमदनी भी जेड़ी सै बधी जानी। तो जियां
1: बिल्कुल
0: कि हरड़ बेड़ा आमला रीठा
1: हाँ
0: कटहल ना, इन्हां औषधीय जेड़े औषधीय पौधे हैं इन्हां दी अजकल बड़ी डिमांड है। अगर अहां दे किसान भाई ना औषधीय पौधे जो लगाते हैं तो काफ़ी महंगे जेड़े से बाजारा च ये उत्पाद बिका देन, तो इस करके यहाँ तो यही बोलते हैं कि यहाँ दे किसान बागवान भाई जेड़े से खेती बाड़ी दे सोगी सोगी होर भी छोटे मोटे व्यवसाय जेड़े से अपनान करने अपनी आमदनी जो बधान।
1: जी हाँ जी कहने इस ते कन्ने दिखा टियाले दे माध्यम से भी जड़ा सा हाँ एक संदेश भी दिंदे रहिंदे ने कि जिका जल भी कुसी दे घर है कोई ब्याह शादी कोई भी कोई ऐसा उत्सव जड़ा सा त्यौहार मनांदे ने या कोई यहाँ जी जन्मदिन ही अगर मनांदे हैं तो महंगे महंगे अगर हाँ तेना जो उपहार दिंदे ने उदे बदला अगर तेना जो हाँ कोई भी एक जड़ा सा एक पौधा अगर हाँ सोगी अगर हाँ दिन तो दिखा सह कितनी एक यादगार जड़ी सह बनी जानी जलो तिन्नी पौधा बड्डा होना तिन्नी फल देने या कुछ भी उत्पादन सह देंगा तो एक तिना का एक ना जड़ा जुड़ी जाना कि ये फलाने बंदा जड़ा सा हाँ जी को उपहार दिता हा दिखा आज ये दिखा कितना सलामत है ना
0: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले कहने, पर्यावरण जो जड़ा सा सुरक्षित रखने वास्ते हाँ जो खूब सारे पेड़ पौधे ता वैसे भी लगाना चाहिए ना, जरूरी नहीं है कि हाँ औषधीय पौधे भी लगाने नहीं, होर
1: हाँ
0: भी जड़े से पेड़ पौधे हाँ लगाई सकते। कहने बाणा च जियाँ कि हाँ बोलते कि भी बंदर वगैरह काफ़ी नुकसान कर देन, ता तेना बेचारे भी तो आ जाना ना, जेड़े
1: हाँ
0: बाणा ने सह कटी कुटी दिते कने तिथु कोई घर बनी आ दे कोई
1: हाँ
0: क्या हो
1: जी
0: याद आ, तो तेना जो भी भूख लगती तो इस करके सह जड़े से अहाँ दे निचले स्तर निचली जगह चाहिए आंदे कने आं दी फसल जो जड़े से नुकसान कर देन। तो हाँ जो ता दिखा किसान मित्र जी ये भी कोशिश करना चाहिए कि हाँ जो जड़े बन वगैरह आंदे तिथु भी जड़े से फलदार पौधे लगाना चाहिए, ताकि इन्हां जड़े जानवर
1: बिल्कुल
0: हैं तिना जो जड़े से तिथु ही खाना मिल जाए कने सह भी सुखी रहन कने हाँ दे किसान भाई है
1: हाँ
0: जो भी नुकसान ना होए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल चंचलो दिखा अहाँ दे बुजुर्ग जल हूँ तो दिखा भी डंगर की गुआली बड़ी घटी है इन्हें
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: डंगर चारना दिना जाना घर दे दिनिया इन्हें दिना तेना अंब को ले आने खाने बत्ता कुथी अंब तोड़ने लोड़ना अंब बीनने चली जाना गां जंगलों जो गां जितू जाके दिन असें अंब खाने तो
0: हाँ
1: इस बाद इन्हें असें गुठली तो दवाई भी देनी है
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: कहना फिर तिना की पूरी देख रेख करनी दिखा अज भी अहाँ दे ग्रां बच्च या कुछ भी दूर पार जलो वहाँ जाते आते दिखते हैं तो दिखा कितने बड़े बड़े विशाल जिसकी अहाँ बोलते ऐसे अंबा दे जड़े से रुख बूट अहाँ जो मिलते कहीं जगह जगह देना जो जड़े से अहाँ दे बुजुर्ग टियाले बनाई के सह तिना दी जड़ी से शोभा बनाई है ना तो
0: बिल्कुल
1: दिखा बुजुर्ग जलू भी अहाँ दे जड़े पुराने बुजुर्ग है अहाँ दे माता पिता अहाँ दे ग्राएं दे साथी ही था तेना दिखा भी कोई कुसी दे कोई बिना पैसे धेले ये सारे काम कीते होने अज भी तेना रुखा बूटे कन्नै तेना दे नाँ जुड़े कि ये फलाने दादुए दा अंब है ये फलानी ताइया अंब लगाया है या कुछ है तेना दे नाँ तेना कन्नै जेले से जुड़ी ही है
0: हाँ जी, तो इस करके अहाँ दे जड़े किसान भाई इनका ने किसान भाई नहीं सारे श्रोता कने अहाँ जो भी चाहे अहाँ जो भी जड़े ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, मैं तो बोलती हाँ दूनी जो भी लगाना चाहिए ना।
1: बिल्कुल हाँ दिखा तो टियाले के जड़े आखे वखे जितना भी पौधा रोपण जड़ा सा ये जी खड्डे वगैरह बनाई थे ना
0: हाँ जी
1: कहना हाँ टियाले के साथी लंबरदार हो रहा जड़ा सा 2-4 दिन पहले इतू आए हे तेना पूरा जड़ा सा पौधे दी कितनी दूरी है पूरी सलाह
0: नापी
1: मशवरा
0: नहीं हो। हाँ
1: करी के जड़े से
0: जी
1: खड्डे वगैरह जड़े सा तेना बनाई थी ना कहना हूँ थोड़े दिन च जड़ा सा इतू 1-2 दिन ची सारे अहाँ के टियाले के साथियों चलो इतू इकट्ठे हो जाना कहते ना खूब मात्रा में जड़ा सा पौधा रोपण करना है ना
0: जी कने दिखा किसान मित्र जी फ्री ते अपने किसान भाइयों का मनोरंजन कर देन, कने सुनान देन फ्री ते ना जो एक प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी।

0: जी तो फिर दे कार्यक्रम च स्वागत है सारे का। कार्यक्रम है मौजां गराई दियां कन आहा गल करा करदे हे प्रकृति माता जो हरा भरा बनाने च पौधा रोपण करने दी गल है ना।
1: हाँ जी
0: इस पौधा रोपण दी गल भी आहा कीती इसे सोगी आहा एक जेड़ा सह होर आहा जेड़ा पौधा आती दी गल करनी है सह आहा करनी है।

0: है ना।
1: जी
0: देखा बंज की खेती बरसात के मौसम जो सबसे जिसी कि हाँ बोलते बांका समय ये मनिया जाता है। कहने बंज जड़ा सा जिसी हाँ बोलते हैं कि गरीब किसान का साथी है। देखा बंज ते अजकल कितना समान सजावटी समान जिसी क्या बोलते कुर्सियां सोफे मेज ये भी जड़े से बनना शुरू हो ही। पहले तो हाँ ये सोचते हैं कि बंज ते जड़ी से बांस दियां टोकरियां कने ये जड़ी से चंगेरा कने डल्ला ही बनदियां। लेकिन देखा बंज दे बड़े सारे फायदे हैं सोगी ये है कि ये भूमि कटाव जो रोकने च बड़ा भारी सहायक है।
1: जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया कने। सही गल है कि भूमि कटाव जड़ा सा भूमि कटाव जो रोकता कने इस करके हाँ दे किसान भाइयों जो किसान बागवान भाइयों जो खूब सारे बंज दे पौधे भी जड़े से जरूर लगाना चाहिए
0: जी हाँ जी
1: कने। इस दे सोगी दिखा किसान मित्र जी जानते जानते अपने किसान भाइयों जो हाँ फ्री ते सुनाना एक प्यारा दिया लोक गीत।
0: जी जरूर हाँ जी।

किसान साथियों, इसी प्यारे दे लोकगीत कन्या कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग आयोजित अंकित धीमान ने कने कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह उन अहां दुनिया दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौज जागरा इंडिया, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

0: अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The discussion is underway in the Lok Sabha on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Moving the bill, the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said, "Taking cognizance of the recent incidents of paper leak, Prime Minister Modi decided that there is a need to further strengthen the legal framework

0: ते सारिया सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारिया श्रोतियों का हाँ टियाले पर फिर ते स्वागत करते हैं। कने जिन्हें जिन्हें अपने रेडियो सेट होनी उन कितने दिन तेरे दस दिए कि कार्यक्रम मैं किसान वाणी कने मैं आज टियाले पर किसान मित्र कने मेरे सोगी है अजय चंचलो जी।
1: जी किसान मित्र जी तुहांदा भी एक बारी फिरी ते ट्याले पर स्वागत है। कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों का फिरी ते ट्याले पर स्वागत कर दें।
0: जी तो चंचलो जी हुण फिरी गल्लां बातां दा जिहड़ा सिलसिला टियाले पर जारी है कने दिखा भई पहले भी अहां गल्लबात करा करदे हे बरसात दे मौसम दी है ना।
1: जी
0: तां दिखा बरसात दा इह जिहड़ा इह मौसम है इस मौसम विच जिहड़ा सै कई तरह दियां ऐसियां खास गल्लां हन जो ध्यान च वी रखणा पौंदियां क्योंकि अहां ठहरे किसान। दिखा पूरा दिन अहां खेतरां विच कम करना हुंदा अपने बगीचियां विच कम करना हुंदा फसलां दी निगरानी देख रेख सोगी अपना पशु धन दा चारा घाह पट्ठा जितना भी है भई कुल मिलाई के हाँ जो बरसात दे मौसम विच अगर अहां दी किसान भैणा अहां दे किसान भाई होई ए तां बड़े सारे जिहड़े से कम कार होंदे बरखा विच जिहड़ा से सिजणा भी पौंदा ना।
1: जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले। कने बरसात दे मौसम च तां हाँ दे किसान भाई बड़े ज्यादा सिजदे हैं ना
0: हाँ
1: क्योंकि तिना डंगर बछुआ जो जेड़ा सा चारा भी लियाना होंदा खेता च कम भी करना होंदा कईयां हाँ दे किसान भाई दी तां घराला भी दूर होंदियां।
0: दूर हो नहीं है कहना अजकल तो सब सबसे जड़ा सा जिसी अहाँ बोलते ना कि जड़ा बंदा इन्हें दिना जड़ा सा ये होंदा कि जिन्नी टाइम मिले जड़ा सा अपना समय निकाले कि अपने पशुओं जियां अजकल बरसाती घा वड्ढी लिया ना ना
1: हाँ जी
0: सह बोलते कि भाई अहाँ तो भी अज पता नहीं कितना कम कमाई लिया कहना पूरे दिन की जड़ी
1: निश्चिंत
0: से
1: होई
0: हाँ
1: जांदी
0: निश्चिंत तो
1: निश्चिंत
0: हुई है ना
1: जी।
0: क्योंकि भी बरखा पई जाती है ना
1: हाँ जी
0: तो बरखा च फिर बढ़ा भी था ये जड़ी से अजकल अहाँ के किसान साथी जड़े से बड़ा जिस हाँ बोलते ना एक सूझबूझ करना बड़ा एक फुर्ती करना काम करते कि बस कायदा जड़ा सा प्रबंध समझा था वो या ने।
1: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलेगा कि देखा किसान मित्र जी एक तो बरसात दे मौसम च ना अपना ध्यान रखना पौंदा हाँ जो क्योंकि
0: हाँ
1: बोलते ना बरसात दे मौसम च बीमारियां बड़ी ज्यादा लगदियां
0: बड़ियां भरिया
1: तो इस करके हाँ दे किसान भाइयों जो ता अपना ध्यान तो रखना चाहिए सोगी सोगी अपने डंगर बछुओं का भी पूरा पूरा ध्यान जरा सा रखना चाहिए।
0: हाँ जी
1: कने जिहड़ी हाँ दे डंगर बछू होंदे ते इन्हां दी खासकर कराला दी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर कराल गिली होंगी तिथु गूंत्र वगैरह ज्यादा होंदा तो इसने भी हाँ दे पशुओं जो काफ़ी बीमारियां जड़ी से लगदियां हैं।
0: हाँ जी जी कहना दिखा इस ते बाद जड़ी सह जड़ी एक गल हाँ हाँ होर अपने किसान साथियों ने साझा करनी है सह लगी उन्होंने चंचलो जी क्योंकि दसना क्योंकि चंचलो जी जल पटियाले पर आते ना अपने झोलू जड़ा सह जानकारियां का पिटारा पाया हों ने।
1: हाँ जी बिल्कुल कही कि हाँ जो अपने किसान भाइयों की फिक्र होंगी तो फिर तो एक सरकारी योजना के बारे च हाँ गल करनी है जिस जो सुनी कि हाँ दे किसान भाई फायदा जरा से जरूर लेंगे।
0: जी
1: तो जिस सरकारी योजना के बारे च किसान भाइयों हाँ गल करनी है सह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
0: हाँ जी
1: तो किसान भाइयों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जी है सह ये 2015 च शुरू की गई थी। कने इस योजना का जोड़ा उद्देश्य है सह हर खेत जो पानी पहुँचा कने पानी की एक एक बूंद जो बचाना है
0: जी
1: ताकि यहाँ के किसान भाई घट पानी च ज़्यादा फसल जड़े से ले सकन। इस योजना के तहत सरकार जड़ी है यहाँ के किसान भाइयों वास्ते नहर ट्यूबवैल कुएं कने तालाब बनाने च मदद करती है जिन्हें इलाके च पानी नहीं पुजता तिथु पाइपलाइना जड़ी से इस योजना के तहत बिछाई जांदियां।
0: हाँ जी
1: सरकार खेतों च ड्रिप सिंचाई कने फवारा सिंचाई लगाने पर किसान भाइयों जो 40 से 50% तक सबसिडी भी जड़ी से दिंदी है।
0: हाँ जी
1: गल की जाए ड्रिप सिंचाई की तो ड्रिप सिंचाई करने ते पानी सीधा पौधे की जड़ा तक बूंद बूंद करके पुजता जिसने 40% तक पानी की जड़ी बचत ऐसे होंगी कने फसल भी जड़ी से बड़ी ज़्यादा होंगी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ग्रां च जड़े पुराने तालाब चेक डैम कने पानी रोकने की संरचना बनाने वास्ते भी जड़ी सरकार है पैसा जड़ा से दिंदी है जिसने बरखा का पानी भी जड़ा से बर्बाद होने च बची जाता कने जमीन के नीचे का पानी भी जड़ा से बधी जाता है। इस योजना का फायदा हाँ दे छोटे किसान बड़े किसान किसान समूह कने सहकारी समितियां जड़ियां से ले सकती हैं कने लाभार्थी चुनने का काम जड़ा से राज्य सरकार करती है। अगर किसान भाई ड्रिप या फवारा लगवाना चाहते हैं या अपने खेत तक पानी की लाइन जड़े से लगवाना चाहते हैं तो किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विभाग या फिर कृषि विज्ञान केंद्र च संपर्क करी सकते हैं कने ऑनलाइन भी यहाँ दे किसान भाई आवेदन जड़े से करी सकते हैं। कने इस दे सोगी दिखा किसान मित्र जी साल 2025-26 वास्ते सरकार ने 16.88 करोड़ बजट का प्रावधान भी जड़ा से किसान भाइयों वास्ते

0: कीते।
1: जी दिखा जानकारी चंचलो जी, कोई भी हो है, कोई भी योजना है अहाँ दे कल्याण वास्ते है, सरकार द्वारा चलाई जाती है ना, तो हाँ जो ये चाहिए कि जरूर इन्हें सारिया ही गल्लां बातों का जरूर उत्थे लाभ लैन है ना,
0: हाँ जी
1: कने ग्राएं विच कई बार कुछ नहीं भी पता होंदा तां तिन्हां दी भी जिहड़ी से मदद करन कि दिखा जमीन अहां वाल सारे वाल लगभग जिहड़ी से खरियां हैं ना, बड़े घट लोग हैं जिन्हां वाल अपनी जमीन थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन फिर भी तिन्हां जो खेती करने का शौक है कर देना, होर अपने आस पड़ोस बिच भी जिहड़ियां से जमीन जियां कुछ किराए पर लेके या कुछ होर हिसाब किताब करके तिन्हां बीजियां ने,
0: जी
1: तो जिहड़ी कृषि सिंचाई योजना है इसका मुख्य उद्देश्य जियां कि तुहां दस्सिया कि हर खेते तक पानी पहुँचाना, कने किसान जो जिहड़ा से आत्मनिर्भर बनाना।
0: बनाना जी।
1: हाँ जी
0: कन्हे इसते सोगी दिखा किसान मित्र जी अपने किसान भाइयों जो हाँ एक गल होर बोलना चाहेंगे कि कुछ एक हाँ दे किसान भाई सोचते हैं कि हाँ भाई जमीन घट है तो हाँ क्या खेती करनी है ना।
1: हाँ दिखा अजकल तो आधुनिक तरीके कन्नै खेती हो करती है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: तो घट जमीना बिच जेड़ा सा विज्ञानिक विधि कन्नै खेती करेगी अच्छी पैदावार अहाँ दे किसान साथी लिया करते, जरूरी से अहाँ दी जियां सोगी नकदी फसल हो या जियां कोई नर्सरी का काम करा करदा या कोई जेड़ा सा कोई हल्दी लगा करते हैं सोगी, और कोई मशरूम का काम है दिखा, मशरूम का काम तो एक छोटे से कमरे से भी शुरू हो
0: शुरू
1: जाता।
0: हो जाता जी।
1: हाँ
0: कने काफ़ी मुनाफा हाँ दे किसान भाई खासकर हाँ दी किसान भैन लै दी है ना, तो
1: हाँ
0: इस करके ये नहीं सोचना कि हाँ बाल जगह घट है जमीन घट है। शुरुआत जड़े से हाँ दे किसान भाइयों जो करना चाहिए कने अगे रस्ते अपने आप ही जड़े से निकलते होंगे ना।
1: जी हाँ जी
0: तो इसके बाद फिर ते दिखा अपने किसान भाइयों का मनोरंजन करना कने सुनाना एक प्यारा दिया लोकगीत।
1: जी

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा हर दिन नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तुहां तक पहुंचान, चाहे ओ अहां दे कृषि विज्ञानकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों सोकी कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला कने मैं गया अज शाहपुर दे धारकंडी क्षेत्र च। इस वेले मैं आई पुज्जिया बो वैली, इतों एक जड़े किसान हैं उन्हें कन्ने मुलाकात हुई है जड़े कि ट्राउट मछली का पालन करते हैं करते हैं इन्हें कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: रणजीत सिंह जी।
0: जी रणजीत सिंह जी, ट्राउट मछली का फार्म है तो हाँ
1: ना। हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, किन्ना के अरसा हुई है ये काम करते?
1: भाई ये 2 साल ते हो गए।
0: अच्छा, 2 साल ते है ना।
1: जी
0: जी। तो इस वेले जो मैं दिखा करता कि तुहाडा ये जड़ा फार्म है इस च यानी कि ये 2 खाने वाला है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो यानी कि 2 खाने ने तो इस च कितना की मछली का उत्पादन हो जाता?
1: सर 1 खाने 4000 पीस आ जाता छोटा बच्चा।
0: अच्छा,
1: 2 खाने 8000।
0: 8000 है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो थोड़ा जे अपने फार्म के बारे च दसा कि जियां चल तुहां ये फार्म बनाया हा तो मछली पालन का काम तुहां शुरू किया, इससे पहले तुहां जियां कुछ सिखलाई वगैरह भी ली जियां मछली पालन?
1: हाँ जी, हाँ जी, ट्रेनिंग ली।
0: अच्छा, कुतो हुई ही है
1: ट्रेनिंग? सर अपने इत्थी हुई, अपने पंचायत करी हुई।
0: अच्छा
1: जी जी।
0: कने जेले तुहां ये फार्म बनाया ता विभाग द्वारा कुछ मिला जियां अनुदान?
1: हां जी, हां जी, अनुदान राशि मिली।
0: अच्छा
1: जी।
0: कदी एदा जेड़ा बनाने दा एदा स्ट्रक्चर वगैरह हसा है कोई नक्शा वगैरह बनदा पहले कि?
1: नक्शा तो अपने विभाग वाले दसिंदे है ना।
0: हां,
1: इतना बाई इतना दा बनाओ
0: जितनी की जमीन होवे ना।
1: हां जी, जमीन दे हिसाब ने वो सर्वे करदे, उसके बाद दसदे कि उस हिसाब ने बनाओ।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: जी। रणजीत जी, इस ते बाद गल करते हैं जियां बीज होंदा ना
1: जी जी
0: मछलियां दा,
1: हाँ जी,
0: कुदों ते लैंदे तो? हां
1: सर, बीज तो अपने अपने अलग अलग हचरी ते लैंदे। हां स्टार्टिंग ते मैं पालमपुर ते लेके आया।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो जिनी उस ते बाद हुण कुदों लैंदे कने?
1: दोबारा तो अपने अपने अपनी चॉइस है, जोगिंदरनगर ते भी ले सकदे।
0: अच्छा।
1: अपने सरकारी बने ने।
0: हां
1: उत्थों ते भी ले सकदे।
0: अच्छा
1: हां जी।
0: नहीं जल मन लिया पालमपुर ते बीज तो हां आणना है ता की आणदे पाए की सी कोई बाल्टी वगैरह च?
1: नहीं, टंकी लेके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के।
0: अच्छा
1: हां, उदे विच बंदा लेके लेबर लेके।
0: अच्छा, यानी कि गड्डीए च जाना?
1: गड्डी जी जाना है ना, लेके आना, टंकी लेके।
0: अच्छा, ऑक्सीजन भी लगानी?
1: ऑक्सीजन लगा के। हां जी।
0: अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि जेलू तो हाँ तो बीज लिया था इतने टाइम से पुजाना ही पौना जिया एक अद्धा दिन लेट हो जाए फिर?
1: नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अच्छा, टंकी जी रहा, ऑक्सीजन चाहिए है ना?
1: ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए।
0: अच्छा,
1: ऑक्सीजन नहीं मिले तो फिर नुकसान हो सकता।
0: अच्छा जी, गल करते हैं ना जड़ा मछली का जड़ा बीज है कौन मछली दसी तो?
1: रेनबो, रेनबो ट्राउट।
0: ट्राउट है ना
1: जी जी,
0: सबसे महंगी मछली है।
1: हाँ जी, सबसे महंगी।
0: अच्छा, तो क्या ऐसा दाम रहा पर किलो के हिसाब से?
1: अपने अपने हिसाब ने बिक जाए, 700-600 से स्टार्ट है।
0: अच्छा है ना, कर देखा ग्राइंड दी ता थोड़ा मेल जोल भाव होंदा कोई आई जाए 10-20 घट भी लगाना पौंदे है ना?
1: लगाना पौंदे। हां जी, हां जी, वो
0: है ना। तो मछली बिकी जंदी तो? हां
1: जी, बिकी जंदी। हां जी सर, बिकी जंदी।
0: अच्छा, अमूमन कितना बड़ा बड़ा पीस हो जंदा यानी कि?
1: सर इस टाइम तो लगभग 500 ग्राम दा पीस है।
0: अच्छा, आधा किलो दा?
1: आधा किलो। हां जी, हां जी,
0: है ना। कने जियां अगर जलो तोहां ए फार्म ते मछली निकालनी है ता कियां निकाल दे जियां कोई जाली वगैरह?
1: जाली वगैरह बने, जाला बने
0: है ना
1: जी।
0: सर बीच डबोया करे निकाल ले? अच्छा, गल करा करदे हे हां जियां बीज दी गल भी होई गई, इना जो जियां दाणा के दंदे तोहां खाने ताईयां?
1: नहीं सर, फीड।
0: अच्छा
1: हां जी, हां जी।
0: मुल्ले ले हुंदे होणे ने?
1: हां जी, मुल्ले लेके हुंदे।
0: अच्छा, जियां तोहां दस्या कि 4000 तक जड़ा था अंदाजन पीस है फार्म विच है ना?
1: हां जी, हां जी।
0: तो कितने टाइम दाणा पाणा है ने?
1: दाणा तो प्रॉपर पाणा पंदा है।
0: दिने दा कितनी बारी पांदे?
1: 2 टाइम पांदे।
0: अच्छा,
1: सवेरे शाम।
0: अच्छा
1: हां जी,
0: यानी कि कुछ किलो दा हिसाब होंदा होना भी इतना किलो पाणा ही पाणा ना?
1: हां जी, हां जी, हां जी।
0: अच्छा, फीड कौन फीड पांदे? कोई फीड दा नाम कोई
1: स्पेशल फीड हुंदी इस
0: तां? अच्छा, मछली तां ही हुंदी है ना?
1: नहीं हुंदी। हां जी, हां जी।
2: अच्छा, दो तीन प्रकार
1: लगभग दो तीन प्रकार दी हुंदी ना सर?
0: अच्छा, कुदू ते लेउंदे फीड?
1: सर मैं तो पालमपुर ते लेके आया।
0: अच्छा, यानी कि जियां कदी गए ता 1-2 महीने तां इया इकट्ठी लिया
1: है? इकट्ठी लेउंदे
0: है ना, कने ओ जद खत्म होई गई ते फिर ही लिया है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, लिया है या भिजवाई देंगे, वो तो मंगाई लेंगे। हाँ तो भेज देंगे।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: तो जी।

0: या पानी दी तो देखा इस क्षेत्र विच कोई कमी नहीं है ना, नेचुरल पानी जड़ा सा ओवदा है ना। कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं होंगी जी सर्दियों च या गर्मियों च?
1: बरसात च थोड़ा
0: अच्छा
1: फ्लड वगैरह आंदे उस वजह ने
0: हाँ,
1: स्पेशल
0: यानी कि बाहर ते कोई जी
1: हां
0: है ना
1: टाइम नुकसान हो सकदा है,
0: अच्छा
1: नहीं संभाली है तो नुकसान हो सकदा।
0: हां
1: हां जी
0: रणजीत जी, जियां फार्म विच कोई जियां बाहर ले जियां जिसे बोलते हैं ना जियां कोई पंछी हो या बाज हो या कोई जियां जिसे यहां बोलते हैं कि पानी वाला सांप डिन जिसे बोलते हैं ना,
1: जी जी जी
0: सह तो नहीं फार्म च आए के नुकसान कर दे
1: सर? आज तक तो आया नहीं वैसे,
0: अच्छा
1: महसूस होया नहीं अगे।
0: हाँ अच्छा यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना?
1: हो सकता है वैसे आ सकते जानवर पक्षी
0: हाँ,
1: आई जाते के बिना।
0: अच्छा ये अलावा जिया होर तो जो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आई कभी जी कोई बीमारी वगैरह लगी ही हो फार्म से कुछ ऐसा?
1: नहीं सर अज तक तो नहीं आई।
0: अच्छा चलो यानी कि जिस बोल सकते हैं ना कि भगवान
1: भगवान
0: कृपा करना बढ़िया फार्म चल रहा है ना।
1: हाँ जी ठीक चले।
0: अच्छा तो फार्म बिच कल्ले करते काम संभाल लेंदे कल्ले?
1: कल्ले हाँ जी कल्ले
0: है ना। गल करते हैं जिया तुहां दा जल्लू ए उत्पादन तैयार होई या फिर बेचना कदू है जाए के?
1: सर अपने कुछ आंदे रहंदे लोग इत्थे ते मिली लेइए ले लेंदे।
0: हाँ
1: लोकल टूरिस्ट वगैरह आंदे रहंदे घूमने ओ ले लेंदे कुछ।
0: हाँ जी हाँ
1: या अदर कदी नीचे छापर चली जांदे या धर्मशाला चली जांदे।
0: अच्छा
1: कदी डिमांड होवे ते फिर
0: हाँ जी यानी कि बिकी जांदी है ना?
1: बिकी जांदी हाँ जी।
0: अच्छा गल करते हैं जिया फार्म दी साफ सफाई भी करना जरूरी होंदी टैंकां दी?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: किन्ने टाइम ते बाद?
1: लगभग महीने डेढ़ महीने बाद साफ सफाई करना पड़ता।
0: अच्छा तो फिर मछलियों की क्या अदला बदली करनी पहले एक कर
1: लेना शिफ्ट एक साफ कर लिया पहले उसके बाद शिफ्ट कर दी दूजे च कर लिया शिफ्ट।
0: अच्छा अच्छा और देने कोई दवाई वगैरह जरूरत तो नहीं होंदी मछली?
1: दवाई तो होंदी सर मछली दवाई लगदी है वैसे पर अज तक मैं यूज नहीं कीती।
0: अच्छा यानी कि देखा है तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है कने कुदरती है तो देखा कुदरत दा जेड़ा साहब जिसे बोलते ना पूरा आशीर्वाद है ना
1: जी।
0: पूरे ही ग्राएं पर कने देखा चौं तरफा कितनी हरियाली कने पानी दी तो कोई कमी नहीं है ना। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਧਾ ਇਹ ਕੁਣ ਕੁਣ ਖੱਡ ਹੈ?
1: ਬਰਾਲ ਖੱਡ ਹੈ ਜੀ।
0: ਬਰਾਲ ਖੱਡ ਹੈ ਨਾ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਬਰਾਲ ਖੱਡ
0: ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ?
1: ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਵਾਲ ਕੀ?
1: ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ।
0: ਅੱਛਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ?
1: ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਤੱਕ ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਜੀ
0: ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ।
0: ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ
1: ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ
0: ਜੀ।
1: ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਲਮ ਵੀ ਹਨ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ
0: ਅੱਛਾ ਬਗੀਚਾ। ਸੇਬ ਕੌਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਸੇਬ ਦੀ? ਇਹ
1: 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੇਬ।
0: ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੈ ਇਹ ਪੌਦੇ
1: ਸਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ?
0: ਹਾਂ
1: ਥੋੜੇ
0: ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ
1: ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ
0: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੈ ਨਾ?
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਲੇ।
0: ਅੱਛਾ ਸੋਗੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ?
1: ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਕਦਿਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ?
1: ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਛ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਤੁਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ?
1: ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ।
0: अच्छा जी दिखाई भी बड़ी खुशी की गल होंगी कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जड़ा सा कोई ऐसा नहीं है कने अपना काम है ना
1: जी जी
0: कने मत सारे अहां दे जड़े किसान हैं बागवान हैं सा इन्हां कामां कने जड़े सा जुड़े होकर अपनी आय जो अगे बढ़ा कर देना ना जी। रणजीत जी अहां दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है तिन्हां च तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी कियां जो दे काम धंधे अपनाई कि अपना रोजगार चलाई पान?
1: सर उन्होंने भी यही सलाह कि अपनी खेतीबाड़ी
0: हाँ जी
1: अपनी बागवानी
0: हाँ
1: करना चाहिए बंदे अपने इनकम बढ़ाने ताई
0: हाँ जी
1: इनकम सोर्स ताई कि आगे आके काम करना चाहिए था
0: जी। हाँ जी
1: मेरी यही सलाह की
0: हाँ
1: हर बंदा अपने हर चीज नेचुरल है
0: हाँ जी
1: पानी मिलता
0: हाँ,
1: नेचुरल चीज है सब कुछ हाँ, सारे बंदे अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने दे अपना
0: बदौलत
1: काफी सहयोग रहा है
0: जी। रणजीत जी तुहां अपने ट्राउट मछली पालन दे अनुभव अपने बागवानी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा कीते अपना कीमती समय तुहां अहां जो दित्ता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसान साथियों इस ते बाद मौसम दी जानकारी तो धर्मशाला दा अज अधिकतम तापमान जड़ा रहा सी 24 डिग्री सैलसीयस न्यूनतम 21 डिग्री सैलसीयस चंबा च अज अधिकतम जड़ा सा तापमान रहा सा रहा 28 डिग्री सैलसीयस का न्यूनतम 24 डिग्री सैलसीयस ऊना च अज अधिकतम जड़ा सा 33 डिग्री सैलसीयस कने न्यूनतम 26 डिग्री सैलसीयस कने बिलासपुर च अज 30 डिग्री सैलसीयस अधिकतम का न्यूनतम जड़ा तापमान रहा सा 25 डिग्री सैलसीयस कने फिलहाल जड़ा सा पूरे जड़ा सा हिमाचल की अगर हाँ गल करिए

0: से वर्खा जी से होवा करती है। कने मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिन तक जोड़ा से मौसम इं ही खराब जोड़ा से बने रहने की संभावना बनी रहनी है। अहां दी सारे श्रोतियां कन्नै दो हाथ जोड़ के जी से गुजारिश है कि नदी नालियां दे किनारे जोड़ा से बिल्कुल भी ना जान। इस सोगी बिजलियां दी जिहड़ियां तारां होंदियां तिन्हां दे भी जोड़ा से दूर जोड़ा से रहना है ना
1: हाँ जी,
0: जी। तो
1: कन्ने
0: इस ते बाद जड़ी से अगली जड़ी से गल ये ऐसा है कि कांगड़ा सब्जी मंडी से थोक भाव की सूची भी टियाले पर पुजी हो है। तो चंचलो जी लगे दसना कि अज मंडी विच क्या क्या सब्जियां दे भाव रहे ने।
1: जी, ता कांगड़ा सब्जी मंडी च सारे ते पहले गल कीती जाए आलू दी, ता आज आलू रिया 10 ते 20 रुपए प्रति किलो, प्याज रिया 34 ते 35, टमाटर 15 ते 30, लहसुन रिया आज 150 ते 160 रुपए प्रति किलो, कने अदरक रिया 200 ते 210, शिमला मिर्च 60 ते 65, अरबी रही अज 22 ते 28, खीरा रिया 20 ते 22, मटर 100 ते 120, फूलगोभी रही 45 ते 55, बंद गोभी 30 ते 35, बैंगन रिया अज 30 ते 40 रुपए प्रति किलो, कद्दू 20 ते 30, कने मूली रही मूली भी अज कांगड़ा सब्जी मंडी च 20 ते 30 रुपए प्रति किलो ही रही, कने टिंडा रिया 55 ते 56, पालक 35 ते 40, हरी मिर्च 45 ते 50, कने धनिया रिया अज 180 ते 200 रुपए प्रति किलो, कने तोरी रही अज 30 ते 35, भिंडी 35 ते 45, घिया रिया अज 35 ते 60, करेला 25 ते 40, फ्रांस बीन 60 ते 65, गाजर रही अज 25 ते 30, कने मशरूम रही अज कांगड़ा सब्जी मंडी च 150 ते 160 रुपए प्रति किलो, कने इस दे सोगी गल कीती जाए फला दी, ता अज सेब रिया 70 ते 200 रुपए प्रति किलो, केला रिया प्रति दर्जन 50 ते 60, अनार रिया 100 ते 120, अनानास 35 ते 40, अमरूद 80 ते 90, मौसमी रही अज 50 ते 60, पपीता 45 ते 50, कने तोता अंब रिया अज 50 ते 65, कने दशहरी अंब 40 ते 60, कने नींबू रिया 70 ते 80 रुपए प्रति किलो।
0: जी। तो ये तो थी कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव की सूची। कने चंचलो जी दिखा बरसात का ये मौसम है, कने इन्हां दिनां जड़ा सा दिखा सब्जी दे भाव च कितना जड़ा सा उछाल हां जो दिखने मिला करता है
1: हाँ
0: ना।
1: जी, हाँ जी,
0: क्योंकि बरसाती दिखा बड़ियां बरखा होने दे कारण भी जड़ा सा कई बारी जड़ा सा सब्जी की पैदावार जियां जित्थों गांह दे जड़े किसान साथी करते हैं तां कुत्थी जड़ा सा फसलां वगैरह भी जियां कई बारी खराब हो जांदियां ना।
1: जी
0: कने तो दिखा भी इन्हां दिनां जड़ा सा थोड़ी जी सब्जी जड़ी सा जियां अस कुत्थी भी अगर लैना जाते हैं लेंदे हैं तां हां जो इयां लगा करदा कि सब्जी बड़ी महंगी मिला करदी बाजार है ना।
1: जी
0: तो देखा भाई जिन्हें दिन अहां दे किसान साथियां ये बेमौसमी जितनी भी सब्जियां वगैरह लगाइया है ना, तो इन्हें दिन दिन जड़े से काफ़ी अच्छे दाम जड़े से मिला करते हैं ना।
1: जी तो हाँ, बिल्कुल ठीक बोलिया किसान मित्र जी, ता ही तो अपने किसान भाई हैं जो हाँ टियाले दे माध्यम ने बार बार बोलते रहते कि किसान भाइयों जागरूक हो के खेती बाड़ी करा ना,
0: हाँ
1: अगेती पछेती किस्मा लगा, अगेती पछेती फसला लगा, तिसने क्या होंगे कि हाँ दे किसान भाई हैं जो मुनाफा होंगे है।
0: हाँ
1: कने इस दे बाद दिखा किसान भाइयों का हाँ फिर ते मनोरंजन करना है, कने सुनाना तेना जो एक प्यार दिया लोकगीत।
0: जी।

0: जी तो किसान साथियों कार्यक्रम में किसान वाणी कन्नै चलदे चलदे जड़ा सै हाँ फिरी सारे अपने श्रोतियां अपने किसान बागवान साथियों सोगी जड़ा सै यही जड़ा सै तिन्हें हाँ दयाले दे माध्यम से सुनेहा जड़ा सै देना है कि बरसात का ये जड़ा मौसम है इस विच खास करी कि जड़ा सै मती सारियां सावधानियां हाँ जो जी हाँ पहले भी गलबात की है बरतना पौंदियां ने ध्यान रखना अपना कहे कि दिखा अहाँ स्वस्थ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे ताई जड़े से अहाँ दे सारे काम धंधे जड़े से इन्हीं जड़े से अगे बढ़ते रहने हैं ना।
1: हाँ जी तो बिल्कुल ठीक बोले कने इस दे सोगी दिखा किसान मित्र जी अजकल बच्चे छुट्टियां भी पई होंगे ना तो
0: हाँ
1: छोटे छोटे बच्चे अपने मामे दे घरे चली जाते रिश्तेदारा दे घरे चली जाते क्योंकि छुट्टियां होंगे तिना तो तिना बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए कहे कि सै छोटे छोटे बच्चे होंगे पता होंगे नहीं तो
0: हाँ बिल्कुल
1: इन्होंने
0: पानी जित
1: हाँ
0: खड्डा
1: जी
0: नालुआ दे कंडे जाने से परहेज करना है कन और भी तो हाँ जो कोई लग्गा करता जियां कोई बाहरली बाहर तो जियां पर्यटक वगैरह आते ना
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तेना जो भी रोकना कने समझाना है ना जी क्योंकि पिल दिखा दरिया नालुआ बिच पानी जड़ा से आई आ करता ना।
1: जी पता नहीं होंदा क्योंकि कई बार क्या होंदा कि मौसम खरा होंदा साफ होंदा कने हाँ जो पता नहीं होंदा कने एकदम पानी आई जांदा तो
0: हाँ
1: इस दी वजह ने कई बार जड़ा से नुकसान होई जांदा तो इन गल्ला दा ध्यान जड़ा से जरूर रखना चाहिदा।
0: जी इसी कन्ने ही कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न होया तकनीकी सहयोग अहें दित्ता अंकित धीमान ने कने कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह कने हुण अहां दुनिया दी अनुमति अच्छा
1: अच्छा जी।
0: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के किए शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ में कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु।

0: अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 156 स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है।
1: स्कूल एजुकेशन पर मेनली फोकस की, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज 150 स्कूल्स में हमने CBSE स्टार्ट किया जो गवर्नमेंट स्कूल में, जो ड्रॉप आउट रेशियो है गवर्नमेंट स्कूल में, जो पिछले 3 साल से आप स्टडी कर रहे थे, वो ड्रॉप आउट रेशियो खत्म हो गया। 24,000 स्टूडेंट्स ने इस अकेडमिक सेशन में गाँव के स्कूल में, विलेज स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 2,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद आज तरहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सैंज और बंजार घाटी की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 20 नई सड़कों का निर्माण व विस्तार किया जा रहा है।
2: हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, यहाँ पे रिमोट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है। तो उस दृष्टि से हमारा जो ये सैंज घाटी है कि यहाँ की बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 53 करोड़ रुपीज जो है वो हमारे रेस्टोरेशन के लिए इस क्षेत्र में दिए गए, जिसमें कई डंगे लगने हैं, कई जगहों पे पैचवर्क होना है।
0: विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लारजी से सैंज और सैंज न्यूली शागढ़ सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने की घोषणा भी की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना के सफल क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग निर्माण क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा और इससे औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आज ऊना जिले के पोलिया में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना स्थल का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन वे प्रदेश की जनता को बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद भर्ती को बीच में रोकना पड़ा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई नकल के मामले में भी सरकार ने चुप्पी साधी और जांच को रोक दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज चंबा जिला के डलहौजी स्थित पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में शामिल किया गया है और अब यहां सभी सुविधाएं विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के समीप लाहड़ में आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और इनमें 3 माह का शिशु भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि सभी मृतक भरमौर विधानसभा क्षेत्र की गहरा पंचायत के रहने वाले थे और चंडीगढ़ से घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष

0: कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 179 सड़क मार्ग, 62 बिजली ट्रांसफार्मर और 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। चंबा जिले के सुल्तानपुर मोहल्ले में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों व दुकानों में बारिश का पानी व मलबा भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। विस्तृत ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: देर रात 2 बजे शुरू हुई बारिश ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और चंबा जिला के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई। लोगों को भारी बारिश के बीच घरों से बाहर रहकर रात गुजारनी पड़ी। वहीं बारिश के बीच एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की जान चली गई। बात की जाए जिला के वर्तमान हालात की तो इस समय जिला में 100 के करीब सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। वहीं 100 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर और 25 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने में अभी समय लगेगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: इस बीच भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए नाहन उपमंडल में कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अन्य जिलों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि संगठन की सबसे बड़ी पूंजी उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। धूमल ने आज समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर उनसे मिलने आए भाजपा युवा मोर्चा नादौन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और अनुशासन को कार्यशैली का आधार बनाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक संगठन की विचारधारा व जन कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में आधुनिक व वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल व उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय एक्सपो में निर्णायक मंडल ने प्रदेश के स्टॉल को नवाचार, प्रस्तुतीकरण तकनीकी जानकारी, फसल विविधीकरण और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों के आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 2-3 अक्टूबर को घुमारवीं का सीर उत्सव आयोजित किया जाएगा। वे आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय घुमारवीं में सीर उत्सव आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि सीर उत्सव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित बनाने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, आगामी 5 वर्षों में सीबीएसई स्कूल राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होंगे शामिल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क व पुल परियोजनाओं के किए शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ में कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नाहन उपमंडल में कल सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जानें।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ ही एफएम

0: शिमला पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर से प्राप्त सूचना अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद तथा सहायिकाओं के 3 पद भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 24 अगस्त 2026 को कार्यालय उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भावानगर में प्रातः 11 बजे तक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र फीडर एरिया की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों विवाहित अविवाहित से सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर के कार्यालय में दिनांक 18 अगस्त 2026 सायं 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद किन किन क्षेत्रों में भरे जाने हैं? उर्नी टापरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद भरा जाना है। निगुलसरी त्रांडा निगुलसरी में एक पद भरा जाना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। कंडार नाथपा भावानगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद छोलतू पुनग टापरी में भरा जाना है। मीरू टापरी में आंगनवाड़ी सहायिका का पद, यांगपा कटगांव में आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10:2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु निर्धारण हेतु तिथि 18 जुलाई 2026 है। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार नायब तहसीलदार कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। यद्यपि आंगनवाड़ी सहायिका यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो सहायिका का मानदेय वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जाएगा। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 370।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी।

ये आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोप कर दूसरी गलती कर रहे हैं।
नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गईं। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा

0: नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:15 होने को हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बबू मान की आवाज़ में ये पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देश, माफ कीजिएगा, आठ बजकर तीस मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का

0: पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

0: हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

0: योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day

श्रोताओ, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका अलका याग्निक द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत। अलका याग्निक भारत की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक है। उनकी मधुर आवाज ने हिंदी फिल्मों को कई दशकों तक समृद्ध किया।

एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत। वे हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपनी गायकी के लिए विख्यात हैं। हिंदी सिनेमा में वे सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं पार्श्व गायिका हैं। उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार के 36 नामांकनों में से 7 बार पुरस्कार मिल चुका है, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हैं। आइए सुनते हैं अलका याग्निक द्वारा गाया एक और गीत फिल्म बाजीगर से।

एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक पर के द्वारा गाए हुए कुछ गीत। इनका जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के अपने करियर में 22,000 से ज़्यादा गीत गाए थे। अलका याग्निक की माँ शुभा याग्निक एक शास्त्रीय गायिका थी और इसलिए उन्हें संगीत की शुरुआती शिक्षा घर से ही मिली थी। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में आकाशवाणी कोलकाता के लिए भजन गाना शुरू कर दिया था। साल 1979 में उन्होंने फिल्म पायल की झनकार से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्हें असली पहचान फिल्म तेजाब जो कि 1988 के सुपरहिट गाने 1, 2, 3 से मिली थी, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। अलका याग्निक ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए रिकॉर्ड 7 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। उन्हें भारतीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, पंजाबी और मराठी सहित कई भाषाओं में बेहतरीन गीत गाए हैं।

श्रोताओं, अलका याज्ञिक को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है। उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 23 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे गायिका अलका याग्निक द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत। और आज की इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतानी। प्रदीप परदेसी की आवाज में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

शांति फिस्ट की आवाज़ में ये लोकगीता भी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीता दी, और अब हम सुनवा रहे हैं अगला शिव भजन महिंद्रो राम की आवाज़ में।

राकेश चंद की आवाज़ में ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतांजलि, और अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा की आवाज़ में।

कर्नल राणा और साथियों की आवाज़ों में गाए इस लोकगीत के साथ आज का धाम गीतांदी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। रात खामोश थी, यादों का सफर जारी था, चांद तन्हा था मगर दिल में तेरा नाम जारी था। हर रात तेरी यादों का दिया जलता रहा, वीरान दिल के आंगन में उजाला पलता रहा।

हर धुन में तेरा चेहरा नजर आने लगा, हर धुन में तेरा चेहरा नजर आने लगा, ये दिल फिर तेरी यादों का।

श्रोताओं, ये खूबसूरत रात, ये ठंडी हवाएं और दिल को छू लेने वाले ये गीत, किसी की मुस्कान अगर आपकी धड़कनों में बस जाए, किसी की याद अगर हर रात साथ निभाए, तो समझ लीजिए मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, जिंदगी की सबसे प्यारी आदत बन जाए। चांदनी भी आज कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही है, चांदनी भी आज कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही है, शायद किसी के प्यार की कहानी हवा में घुल रही है।

दोस्तों, नींद भी क्या अजीब चीज़ है ना। कभी पलकों पर आते ही ख्वाब सजा देती है और कभी किसी की याद में सारी रात जगा देती है। हमने नींद से कहा कि आकर मेरे दिल को सुकून दे। हमने नींद से कहा कि आकर मेरे दिल को सुकून दे। वो मुस्कुराकर बोली, पहले यादों को तो रुखसत कर ले।

करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है और तेरी याद चुपके से दिल में उतर जाती है। नींद आती भी है तो ठहर नहीं पाती, तेरी सोच हर ख्वाब का रास्ता बदल जाती है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ बातें दिल में छुपी रह जाती हैं, और फिर दिल बस यही पूछता है कि फिर मिलोगे कभी किसी मोड़ पर जहां यादें होंगी और वही पुराना एहसास होगा। वक्त बदल जाएगा, मौसम बदल जाएंगे, मगर कुछ रिश्तों की खुशबू हमेशा साथ रह जाती है। शायद कोई शाम फिर ऐसी आए जब चांद भी गवाह बने और ये दिल कह

0: श्रोताओं, कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर किसी शाम किसी गीत के बहाने याद आ जाते हैं। उम्मीद है वो पल फिर आएगा जब दिल कहेगा हाँ तुमसे फिर मुलाकात होगी।
1: फिर मिलोगे कभी इस बार।
0: इस गीत के साथ ही नर्मदा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों

पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।